0: प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: ए सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 718 रे जोगाजोग करंतु।

नमस्कार श्रोता बंधु, आपण सुनुछंती 110.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक। आज 1948 शकाब्द आषाढ़ मास 30 दिन मंगलवार, इंग्राजी 2026 मसीहा जुलाई मास 21 तारीख। समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे सकाळ 5:58:45। स्वागत जनाई आरंभ करुछु आजिर प्रातः अधिवेशन।

0: जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ट्यून करिसेंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 102 तम भाग।

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रही जी आज आपणक सह एवं सकाळ सकाळ निश्चित रूपे अनेक किछि चिंता मन रे आसे माने दिन सारा रा स्केड्यूल केमति रखिबे पूरा दिन रो प्लानिंग केमति करिबे आउ कोन कोन सब कले माने दिनटा बहुत बढ़िया कि जीव आउ कोन कोन सब रहिछि काम से काम को बिसुरु खुरु रे करिबा को पड़िबा तबे दिनर गोटे भल स्टार्ट कोठ हुए कहले जते बेले आमे परिवार सहित मिसिकी गोटे खुशी खुशी दिनटा को आरंभ करू देखिबे दिनटा सबुठ बढ़िया जाए किंतु बेले बेले कोन हुए परिवार रो एभली सदस्य किसी था जो मैंने कि आपन को एभली कथार बुढ़ियाणी जलरे एभली माने ट्रैप कर दिखती जे आपन को लगे ना बहुत हुए मु भूल एवं ये जिनसटा को ठीक करने दरकार जिते आप ठीक करुवे आपण को से माने एटा सबुबले फील करूथबे जी नाही एटा माने मु जहा करूची भूल करूची मते आहुरी करिवार अछि आहुरी करिवार अछि आहुरी करिवार अछि सो लगान तो सेठी गोटे ब्रेक कारण ई जो जिनसटा को कहा जाए विक्टिम कार्ड निजो इमोशंस को अस्त्र रूपे व्यवहार करि जन को गिल्टी फील करेबा दिस इज कॉल्ड विक्टिम कार्ड एवं ए विक्टिम कार्ड रो निजको टिके दूरे की रखंतु मानुची से आपण को फैमिली रो सदस्य फैमिली रो अंश निश्चित रूपे कष्ट लागिबा स्वाभाविक किंतु जदी ए अभ्यास को आपण जेमते कहंती निया रे जते हमें घी ढालिबा कोन हबो नियाटा होरी जळिबो तेनु ए अभ्यास टाकु जदी आमे आवश्यकता रु अत्यधिक माने इम्पोर्टेंस दबा तेबे आग को जाकि धीरे धीरे हो पछे सेटा भयंकर रूप नहीं जीव आपण देखिबे धीरे धीरे धीरे धीरे आपणकर शांति को रिप्लेस करिबो अशांति आउ जदि आपण निजे शांति रे रही पारिबेनी तेबे परिवार रो कथा बुझिबे केमती निजे जदि खुशी रे न रही पारले तेबे समस्तन कथा बुझिबे केमती आउ एटा केवल प्रत्येकटी परिवार रो कथा नुहे आपण ऑफिस जानतो बाहर को बाहर तो देखिबे सबुठी एहिपरि जणे जणे आपण को मिलिबे सो आज डेट रे एभली लोकों को संख्या मा कम नहीं तेणु से भली जदि आपण किछि फेस करुछंती देन एतिकी कहिबी जे प्रथम कथा टिके स्पेस रखंतु आउ तापरे सेमानंक इमोशंस को बुझिबा को चेष्टा निश्चय करंतु किंतु जदि जणे सटिस्फाई न होउछि आवश्यकता रु अत्यधिक सटिस्फाई काहा को करिबा आतो आवश्यकता नाही निज उपरे ध्यान दियंतु निजे खुशी रे रहंतु जो माने एक्चुअली आपन को भलो पाउछंती तांको भलो पाइबा दियंतु आउ आगो को बढंतु आउ आमे भी आगो को बढिबा कारण हेबा को जाउछि सकाळ 6:55 मिनिट आपण सुनि परिबे एबे संस्कृत रे संवाद रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो एमती रही थांतु आम सह दिल से दिल तक।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं सम्प्राप्तवती. कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते. राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति. सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन

इनबोकाटा को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनुरचिया जी सुबह सकाळ को नहीं दिल से दिल तक एमती रहता आम सह।

तो कौन करुछन्ति आपण जानिबाकु चाहूची अनु हेले ता पूर्वरु कहिबाकु चाहूची जे जो टुप टाप वर्षा होउची से वर्षा पाको तो सतरे बहुत रोमांटिक लगे नुए किंतु ता सहित ई जो दैनन्दिन जीवन रे वर्षा सहित एक रकम गोटे आमर स्ट्रगल चले तेणिकि आपण घरे रुहन्तु कि बाहेरे घरे रहिले कपड़ा सुखेबारे प्रॉब्लम कोठी घर भितरे तारो बांधो आउ कपड़ा सुखाओ आउ सेमती बाहर को जदि जाउछंती बरसाती काढ़ो नले छता बाहर करो आउ बाहर को चलो नै कि आउ जो माने बाहर को जाउछंती खास करकी ए समय रे तो बरसा रे जदि बाय चांस भिजी गले कारण एभे एभली गुमसुम पागो होउची लागुस जेमती एइना बरसे जीव हेले जमा वर्षा होउनथु आपण भाबते हो म जमा वर्षा होनी बाहर को पळेबानी सेमती आउ एमती भाबे की बेपुर भाबे बाहरी जाइथिबे आउ वर्षा काछि देला कोन अवस्था तो कहिबार कथा हला एमती जदि माने एमती वर्षा रे भिजिबा ताले थंडा ज्वर निश्चय हो आउ आजकल आपण जानिथिबे जे वायरल फीवर चारिआडे कारण ए जो पागर किछ ठीक ठिकणा रहुनी सेथि पई कि बॉडी एडजस्ट करिया भी कष्ट सेथि पई निज जत्न निहाती नियंतु आउ ए वर्षा समय रे खास करी आपण जदि टिके काढ़ा बनई कि पीबे एमती कि अदा गोलमर्च तुलसी पत्र पुदीना पत्र भी पकई परिबे ए सब जिनस कण हुए जी प्रथम कथा थंडा को तो काटिबो आउ पुदीना कथा एथि पई कहली कारण वर्षा दिने साधारणत कण हुए किए हजम क्रियाटा टिके स्लो हो जाए स्लो डाउन हो जाए तेणुक पुदीना जीरा ये सब जिनस टिके आपण पटे पकाउथिबे तबे देखिबे आपणकर जो पाचन प्रक्रियाटा अछि सेटा स्ट्रांग हो जिवो तो चलंतु एमती खट्टा मीठा कथा ए शुभ सकाळरे आगको आहुरी बहुत किछि रखिछि आपणक पई म्यूजिक मित्र अनु हेले एबे एबे नबा गोटे छोटिया ब्रेक शुणिबा गोटे ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी चमेली जाको गाई छंती आपण तो जानी सारी बेनी सनी धी चौहान

0: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
1: পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র এমতি রয়ে থাকতো 100.4 আকাশবাণী এফএম রেনবো কাটাকরে দিল সে দিল তক। প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রো।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक

0: पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र

0: लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता

0: आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबार

0: क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially able persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia, and Romania. She is the

तुम जब भी ऐसे देखते हो हमें, कुछ होता है सनम, बस ऐसे तुम देखा ना करो। व्हाट्सएप आगे पुणि थे स्वागत आपको मॉर्निंग में लोड़ी रे अच्छे आप सहित म्यूजिक मित्र अनु दिल से दिल तक सो फ्रेंड्स ये जो टिके टिके वर्षा थंडा थंडा पागरे मॉर्निंग में लोड़ी रे आपण सहित म्यूजिक मित्र अनु रही करिबा को आपण सहित बहुत गुड़ाए गप कारण अनेक दिन है गपसप है ना आपण सहित अनेक किछे कथा अच्छी हेले कौन खाऊ कहले अच्छा कहबेनी सिक्रेट ओके ओके सिक्रेटली खातु ना पेट कौन बजे कहती ना मानते बेसी खाइबा डिस्कस कले पेटा मानते समस्त नजर पड़े आ पेट कामुड़े एमती कि रही अवश्य के एक्सपीरियंस है कि कहती हेले आमे जमा भी सेमती चाहिबुनी किंतु चाहिबु जे आपनकर पेट सब ठीक रहू हजम ठीक हो कारण वर्षा दिने कौन हुए जमती कि कही आपको जे टिके हजम क्रियाटा धीमे जाए आउ सेथिपाई कि आमको ए समय रे खाइबा उपरे बहुत ध्यान दबार अछि आउ कौन ध्यान देबे से संपर्क रे कहिबी हेले ता पूर्वरु नै जीव गोटे छोटिया म्यूजिकल ब्रेक सुनबे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक दिल से दिल तक।

0: Hey friends, tune karichandi 100.4 Akashvani FM Rainbow Katakku dil se dil tak music mitra anurochi aji apanunko sah ebong ame kotha hochi je ei barsha dine apanunko odisha ra keu sthana khas kari bahut pasand ebong buliwaku bhal lage to dekhina baki karchanti call. Hello.
1: Hello, very good morning.
0: प्रथमे निज रेडियो रो वॉल्यूम को ऑफ करू त ताकि हम कथा हे परबा.
1: हां मैडम.
0: हां तो के कहउछंती गोठ कहउछंती
1: मु कोलाहानी जिला भानीपाटना जगन्नाथपुर रो चित्र संसबर कहउछी मैडम. जय जगन्नाथ.
0: ओ जय जगन्नाथ. केमती अछंती प्रथमे कहंत
1: मु तो बहुत भलो अछि. आपण केमती अछंती?
0: बहुत बढ़िया. आज रे टॉपिक ऊपर कोन कहबे?
1: मु आ कोनो कहबी अमर फुरली झरन रे बुलीबा पाई बहुत भलो लागे. आपण थोरे आसंतु बुलीबे झरन पानी होती सेने अमर पार्क ओसी बुलीबा पाई बहुत भलो लागे. वर्षा होथिबो जंगल पहाड़ ता ओसी ना बहुत सिनेरी ओसी.
0: अच्छा पाखा पाखी आपण घर पाखा पाखी?
1: हां हम पाखरे हेबो 30 किलोमीटर हेबो.
0: अच्छा अच्छा अच्छा जागर नाटा कोन आउथर कहि देले?
1: फुरली झरन.
0: अच्छा फुरली झरन कारण आम लिसनर्स माने सुनु छथि
1: कोलाहांडी रो फुरली झरन फेमस आउ.
0: अच्छा निश्चय निश्चय माने आमे चाहिबो आम लिसनर्स माने जो माने सुनु छथि से माने भी जानतु एन्जॉय करनतु. आपण जानती?
1: हां मैडम.
0: ओके
1: जाखम भी ओछि मैडम. हां फुरली झरन जाखम ते पाखरे पेर मंजी भी ओछि मैडम. सने 30 एकड़ रे इने अमर बगीचा ओछि आंबो बगीचा जांबो पिजुली जते कोदळी एटा मन अछि आउ.
0: ओके बढ़िया बढ़िया ठीक अछि. आमे जानिलु निश्चय बुलिया को जेबो. ठीक अछि रहिली. नमस्कार.
1: जय जगन्नाथ.
0: जय जगन्नाथ. तो एथिले चित्रा कोलाहांडी रो बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहिले. तांको कोलाहांडी रे को जागा अछि बुलिबा पई से जागा उडी को मध्य आम पखरे रखिले जे ए ए जगह आपण जदि बुलिया को आसीबे खास करी बरसात में बहुत भल लागिवो. तो निश्चय जो माने बुलिबा प्रिय खास करी मु चाहि भी से माने निश्चय जानतु आम ओडिसा कोटे बहुत सुंदर जगह. अनेक जिनस हम एक्सप्लोर करि परुने किंतु जो माने बुलंती से माने निश्चय हमें चाहिबु जे जानतु एक्सप्लोर करंतु. तो आगे को बढ़िबा देखने बा के करछदि कॉल. हेलो
2: मैम नमस्कार. जय जगन्नाथ.
0: नमस्कार. जय जगन्नाथ. की कहउछंती कोठ कहउछंती?
2: मैम मु प्रफुल्ल पवार कहउथिली कुआरपाल माणिया मंदिर.
0: केमती अछंती?
2: मैम बहुत बढ़िया अछि. पाग भी भलो अछि. बरसात पाड़े आज टिके छाड़ी छि आ 4-5 दिन धरि वर्षा लगातार लागी रही छि आ.
0: ओहो माने आज टिके छाड़ी जाई छि तहले?
2: आज टिके छाड़ी जाई सकाळ टिके पाग भलो अछि.
0: ओके त आज रे टॉपिक उपर कोन कहबे?
2: ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପୁରୀ ତ ଯିବାକୁ ପ୍ରଥମ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସଦାବେଳେ. ପ୍ରାୟ ଯାଏ ଏବେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି. ଆଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ଶିବାଳୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ. ପାଣି ଥାଏ ଧର ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି ସି ବିଚ୍ ଗୋଟେ ସେଠି ମହାପୁର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ. ଧବଳେଶ୍ୱର ଟିକେ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ. ଏଠାରେ କପିଳାସ ବୈଷୟ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ. ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ. ଆଉ ତା ଛଡା ମତେ ଗହୀରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ.
0: ଆଚ୍ଛା ନଈରେ ମାଛ ବି ଧରନ୍ତି?
2: ବହୁତ ମାଛ ମରା ହୁଏ. ଏବେ ଟିକେ ମାଛ ତ କମି ଯାଇଛନ୍ତି. ବିଶ୍ୱାସ ପକେଇଛନ୍ତି ମାଛ ମରା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଆଇଲା ମାନେ ଧରିବୁ ଖଇଛି ମୁଗୁଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯିବୁ ତାପ ଗୁଡା ବୁହାଇକି ମାଛ ମାରୁ ଧୁମୁ ଆଉ.
0: ବଢିଆ ଆଉ ତ ତେଣୁକରି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ. ଠିକ ଅଛି? ଓକେ ରହିଲି. ନମସ୍କାର.
2: ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.
0: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ. ତ ଏଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ମାଣିଆ ବନ୍ଧରୁ. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ପୋଖରୀରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ. ତ ମାଛ ଖାଲି ଧରିଲେ ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ପଠେଇ ବି ଦେବେ. ତ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟ୍ରାକ୍. ଆଉ ପୁଣି ଆସି କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ. ଦିଲ୍ ସି ଦିଲ୍ ତକ୍

0: टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजो करंतु।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आते हैं।
1: सवाल पूछ लिया जाएगा और उस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, और अगर बॉलीवुड सरताज आप बने तो कॉल मिलाएंगे हम आपको, रैंडमली कोई नंबर चूज करेंगे, आपको कॉल मिलाएंगे, आपसे बातें करेंगे और सही जवाब आपसे डायरेक्टली ऑन एयर जानेंगे। रही बात आपके नाम की, तो आप सबका काम व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने मैसेज किया है तो आप सबके मैसेजेस पढ़े जाएंगे, आप सबके नाम लिए जाएंगे, आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप मैसेज करना है जो बिल्कुल फ्री है। और सवाल तो एकदम ही आसान है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, जैसे कि आप आकाशवाणी रेनबो सुनते हैं उसके बाद कहीं नहीं जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आज का सवाल क्या है। तो आज की क्विज है कि अपकमिंग जनादेश जो मूवी है प्रकाश झा की, उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। ऑलरेडी बता चुकी हूं, अब आपकी बारी। व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर जिसका नंबर का नाम है 9868107070 9868107070। और हाँ, मेरा नाम बबिता त्रिपाठी, शो का नाम बॉलीवुड ट्रेल्स, टोटल मिला के बीटी विद बीटी। एंजॉय कर रहे हैं आप, करते रहिए।

कल यानी 20 तारीख को रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और निर्देशक एटली की बात करें तो क्या जबरदस्त तारीफ की है भाई। वैसे तो लगभग सभी ने तारीफ की है इसके एकदम भव्य ट्रेलर की, लेकिन एटली जब कुछ कहते हैं तो भाई निर्देशक हैं, ऐसे में उनकी बात अलग ही मायने रखती है। उन्होंने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्साइटमेंट है इस मूवी का वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जवान जैसी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और वो मुरीद हो गए हैं इस ट्रेलर को देखकर। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि नमित मल्होत्रा निर्देशक जो निर्माता है और निर्देशक नितेश तिवारी हैं और फिल्म की स्टार कास्ट है सब जबरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजन, विजुअल्स और कलाकारों के अभिनय की जबरदस्त तारीफ है क्योंकि वो भव्य है, जादुई है, उनका जो अनुभव है वो देखकर ऐसा ही कुछ है। हर एक पर्सन की उन्होंने अलग अलग तारीफ की है, पूरा फ्रेम उन्होंने भव्य, नया और जादुई महसूस होता है ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी तय है रामायण की। और एक फिल्म और है जिसके ट्रेलर का हम सबको इंतजार है और उसकी रिलीज यानी ट्रेलर की रिलीज डेट कह सकते हैं या फिर उसका जो लॉन्च है वो भी काफी भव्य होने वाला है। वो कौन सी फिल्म है जानेंगे बताएंगे थोड़ी देर में, आपको जाना ही होगा क्योंकि उस मूवी की भी काफी चर्चा है। थोड़ी देर में लौट कर

भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश, और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च होगा और वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है। बेंगलुरु के एक ग्रैंड इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। और टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ फेरी ट्रेल फॉर ग्रोन अप्स, इसके लिए हम सब की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी जो अपडेट्स हैं वो और ज्यादा आ रही हैं। फिलहाल देखेंगे ट्रेलर देखकर हम सब की क्या राय बनती है। वैसे एक बात तो फिक्स है कि जब यश होते हैं किसी मूवी में तो वो मूवी काफी यशस्वी बन जाती है ना। तो फिलहाल देखते हैं इस मूवी का क्या हाल होता है।

तो जी अभी रामायण की बात की, क्या ग्रैंड उसका लॉन्च किया गया है उसका ट्रेलर, और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है, और इस बात की

आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड शेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेडियो दिल से दिल तक। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लौट कराती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ जिन्होंने जवाब दिए हैं सही या गलत, डजंट मैटर। फिलहाल आपको बता दूं, मैंने पूछा था कि अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में कौन है, आपको बस यही बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

हैं आप सबके नामों की जिन्होंने जवाब दिया है आज के क्विज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप दिल्ली से लिख रहे हैं और इनका ही मैसेज सबसे पहले दिखा, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको हम शुरू से लेते हैं ताकि कोई नाम मिस ना हो। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज भी दिखा है, लेकिन हाँ सबसे पहले अपना नाम लिखने को कहा था। कई बार मिस हो जाता है आपका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा, फिर आंसर लंबा लिख दिया। आंसर लिखना है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, बस इतनी सी बात, और आंसर भेज देना है, दैट्स इट। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, इरशाद अशरफी शहर का नाम है इनके, और इरशाद का नाम इरशाद है या अशरफी है या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद इन्होंने राजस्थान से मैसेज किया है। और हैरी सिंधु बटिंडा से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, उसके बाद सुकलाला बाला का है वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे कोमल और पूजा का दिल्ली से सही जवाब के साथ। ये सब सही जवाब के साथ आंसर्स आए हैं, इम्तियाज सही जवाब के साथ मैसेजेस आए हैं, और इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से लिख रहे हैं, और निकिता कहां से लिख रही है, पुणे से लिख रही हैं, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से, और विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, संजय खत्री कोल्हापुर से, और तुषा ये नेक्स्ट मैसेज अपना नाम सबसे पहले लिखते तो अच्छा लगता ना, ढूंढना पड़ रहा है मुझे, निधि प्रयागराज से, और रणवीर मोनिश ये कहीं से लिख रहे हैं, अभी ढूंढने का टाइम नहीं है। कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, मीना चौधरी शास्त्री नगर मेरठ से, दानिश कतौली से, और तवसीफ अहमद का मैसेज श्रीनगर से आया है, और मिसेस धर्म भाटिया जी का मैसेज रोहतक से आया है, राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ललित का मैसेज आया है पंजाब से, राजीव कुमार का मेरठ से, और टूडेज क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था। चलिए ठीक है, अपना नाम भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, नाम नहीं लिखा हुआ है। सीमा मेरठ से लिख रही हैं और ये भाई थैंक यू सो मच, तारीफ में आपका नाम गुम हो गया। औरंगाबाद बिहार से महेंद्र प्रताप सिंह का मैसेज, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, अजय कुमार का छत्तीसगढ़ से, और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अपना नाम सबसे पहले आपने भी नहीं लिखा है उमेश, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने लिखा है खयाला से, और आप में से कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सहताज, ढूंढ कर लाती हूँ।

0: तो चलिए इस वक्त हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर आज का बॉलीवुड सरताज कौन है, और बॉलीवुड सरताज हमारे बीच ही हैं। वो अपना नाम स्वयं बताएंगी और कहां से बोल रही हैं, क्या करती हैं, सब कुछ जानने के लिए अगर आप हैं बेताब तो लीजिए हाजिर है आज की बॉलीवुड सरताज। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम मैं मीना चौधरी फ्रॉम मेरठ से बात कर रही हूँ।
0: मेरठ से मीना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद
0: मीना, क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हूँ।
0: वाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हैं और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो सुन रही हैं, कैसे सब कुछ शांति है?
1: जी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी चला के जा रहे थे और इस समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
0: हमें कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, घर पे हैं, कहीं से भी आप हमें सुन सकते हैं और हर वर्ग के लोग सुनते हैं, बहुत मजा आता है। तो मीना, पहले तो आपको बॉलीवुड सरताज बनने की ढेर सारी बधाई करते हैं क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। एक बार ऑन एयर भी आप बता दीजिए, मैंने पूछा था अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं?
1: अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में तुषार कपूर।
0: ग्रेट, इसी के साथ आप बनती है बॉलीवुड सरताज। क्लैपिंग आपके लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है मीना जी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है मैम। सबसे पहले मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा।
0: सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बस यही सुनना था मुझे। तो मीना जी, आप दिल्ली पुलिस में हैं, आम नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी?
1: आम नागरिकों को मैम बस मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अभी फिलहाल ड्राइव करते समय आपसे बात कर रही हूँ, बस कोई भी गाड़ी चलाते समय फोन पे बातचीत ना करें, रेडियो जरूर सुन सकते हैं।
0: हाँ, रेडियो सुन सकते हैं बट गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है और थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से दिल तक आप जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। ठीक है मीना जी,
1: नमस्कार।
0: ओके बाय।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू।
0: तो ये थी मीना आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज जैसे ही आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक जुड़े रहिए। फिलहाल 1 बजे आपके लिए क्या खास होने वाला है अगले प्रोग्राम में बताती हुई जाऊंगी। इस गाने को तो सुन लीजिए।

फिलहाल तो समय यही कह रहा है कि बॉलीवुड ट्रेल से लेना होगा। बबीता त्रिपाठी का विदा यानी बीटी विद बीटी का फिलहाल यहाँ पर समाप्त किया जाता है। एक गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन हाँ लौट कर आऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस एक घंटे बाद लेकर आऊंगी हमारे एक्सपर्ट को रेनबो हेल्पलाइन में। और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और ऐसे में अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है हेयर फॉल को रोकना, जो हम सब के साथ कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और भी बहुत सारी हेयर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप उन सब का निवारण चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहना है। यहां हर टॉपिक पर बातचीत होती है और आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, स्किन एंड हेयर केयर इन मॉनसून। और एक्सपर्ट इज नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगी 1 बजे। तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा, लेकर आऊंगी भारती तनेजा को और आप सबके सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए दीजिए विदा, लौट कर आती हूँ और उससे पहले एंजॉय कीजिए वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले 8 Cool उत्कर्ष के साथ। बाय बाय।

0: sure many of you have your own creative hobbies, whether it's drawing, painting, calligraphy, knitting, origami, or anything else. Tell us all about what you enjoy making at 9868107070 on WhatsApp while we take a very short break.
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर बिंदास बोल
4: तो पार्टी शुरू हुई है
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
5: म्यूजिक मस्ती

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: For those just tuning in, this is 102.6 Akashvani Rainbows, Play It Cool. And today we are talking about the simple pleasures of art that one can make by themselves. But before we continue, we give you Chihiro by Billie Eilish.

0: Miss Swati has tuned into us from Patna and writes, when you read, the author only gives you words. Your mind takes those words and designs its own pictures, faces, and an entire world on its own screen. This is the greatest workout for your brain's imagination. She also admits that she loves reading novels and that experimenting with new dishes and drawing is another big passion of hers. She has also shared a sketch of hers depicting the Lord Ganesha. Dear listeners, we are very, very thankful when you do send us pictures of your artistic endeavors, but do realize that we cannot show them to you and other listeners, but we very much appreciate your thoughts, Ms. Swati, and it's always a pleasure to have you on the show. Do you have also other creative pastimes or perhaps a small art project that you're especially proud of? Let us know at 9868107070 on WhatsApp as we take this hour's last break.
1: Let's join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू. सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी. ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए.
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने के बारे में जानकारी मांगी है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। जम्मू में कल तेज बारिश के कारण एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर रेनबो हेल्पलाइन।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। तो रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे मॉनसून पर, मॉनसून के सीजन में किस तरह से अपने स्किन की देखभाल करें, किस तरह से अपने बालों की देखभाल करें। सबसे बड़ी समस्या होती है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और भी ज्यादा समस्या कि स्किन क्यों चिपचिपी हो रही है। ऐसी तमाम समस्याएं आपकी पर्सनल हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि मेरी स्किन में इस मौसम में कुछ कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और वो गड़बड़ सिर्फ आपको पता है, और हो सकता है आपकी जो गड़बड़ है वो किसी और से भी रिलेट कर जाए तो उनको भी फायदा हो जाए। कह क्यों रही हूं, इसलिए कि आप कॉल लगाइए और पूछ डालिए। हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जुड़ चुकी है, नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो बिल्कुल तैयार है, इस मौसम में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे तो आप ही बताएंगी बहुत अच्छे से, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आते होंगे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो इस मौसम में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल है, आप फोन उठाइए और नंबर घुमाइए, नंबर मैं बताती हूँ, जिससे आप डायरेक्टली डॉक्टर भारती से बात करेंगे और अपने सवाल पूछ डालेंगे। 2342108 ये एक नंबर है। एक नंबर और है 2342108 जिस पर आपको कॉल लगाना है और हमसे डायरेक्टली बात करनी है डॉक्टर भारती तनेजा जी से। आप सवाल पूछिए और जवाब अपना ले लीजिए, और साथ में आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और भेज देना है अपने सवाल के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी रेनबो पर शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून सीजन में त्वचा और आंखों की देखभाल पर। हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुकी है हमारे साथ, जो है डॉक्टर भारती तनेजा, स्टूडियो में मौजूद है। ब्यूटी एक्सपर्ट है, आप सब जानते हैं, और ये नाम हम सब को बचपन से सुनने को मिलता आ रहा है, खासकर मुझे, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। और मैं जानती हूँ कि आप के पास हर चीज का घरेलू उपचार है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, और मॉनसून सीजन में खास तौर पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं स्किन की और हेयर की। तो आप कॉल उठाइए, फोन उठाइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल डॉक्टर भारती तनेजा से पूछ सकते हैं। 9868107070 ये है व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए नंबर। फिलहाल डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे, इस मौसम में खास तौर से किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन में और हेयर में, और क्यों आती हैं?
1: बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन में इस वक्त आती ही आती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है। स्किन में अगर बात करें तो आप देखिए, स्किन के ऊपर पोर्स आपके जब खुले होते हैं, जब भी ह्यूमिडिटी होती है इससे पोर्स भी खुल जाते हैं, और इतनी गंदगी आपके, देखिए पोल्यूशन इतना है, पोल्यूशन ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है, और जब पसीना आता है और पोर्स में जो मिट्टी है वो जम जाती है, उससे ब्लैकहेड्स बन जाते हैं, फिर वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं। तो एक्ने की समस्या जो है सबसे ज्यादा इन दिनों में होती है। और बाल तो बालों के क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, और आपका वो एकदम

0: जो बाल हैं वो रफ हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, और बारिश की वजह से जब भीग जाते हैं बाल तो और खराब हो जाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. इवन फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, पैरों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं. तो एक एक करके सबको लेते रहते हैं.
1: जी बिल्कुल. और आपने कहा जिस तरह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी पार्ट में आ सकती हैं, स्किन के किसी भी जगह पे, बॉडी के किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है. हाथ पैर पर खास तौर पर प्रॉब्लम्स आती है खुजली की, मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एकदम.
1: ये क्यों होता है?
0: बारिश में हम लोग भीग के आते हैं ना जैसे, तो पैरों के अंदर पानी जो है वो रह जाता है. जैसे आपने शूज पहन लिए,
1: हाँ.
0: चप्पल पहन लिए, तो आपकी उंगलियां जो बिल्कुल टाइटली बंद हो गई है ना चप्पल के अंदर. तो वहां पे बारिश के, आप देखिए बारिश के अंदर जो पानी होता है ना, हमें लगता है कि ये पानी तो साफ है, लेकिन वो एटमोसफेयर से बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारे बैक्टीरिया लेके रहता है. तो वहां पे बैक्टीरिया पोल्यूशन रहता है ना, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए खुजली ज्यादा हो जाती है. तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम बारिश से भीग के आए तो हम लोग को लगता है अब बाल तो धुल गए, तो बाल तो, पर बालों के देखिए मिट्टी जो है ना, आपके पहले ग्रीस मिट्टी पहले से ही है, ऊपर से पानी पड़ा और बालों के अंदर एक लेयर बन गई मिट्टी की, तो वो गंदगी की लेयर बन जाती है और वहां पे आपके बैक्टीरिया पनपते हैं, वहां पे आपको डैंड्रफ शुरू जाती है, वहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है. तो हर जगह पे उनको धोना जरूरी है.

0: क्लीन हो जाए. फेस है तो फेस को भी वॉश करना जरूरी है. जितना धूल मिट्टी है वो आपके फेस पे जम ना जाए. आप अच्छे से क्लीन कीजिए फेस को, ताकि अगर धूल मिट्टी जमी है और आपके पोर्स में जमने वाली है और एक्ने होने के चांसेस लेटर है, तो पहले से ही साफ कर लीजिए ताकि आपके ब्लैक हेड्स ना बने. और मैं तो कहूंगी फेस के लिए एक बार दिन में अगर हम स्क्रब कर लें, अदरवाइज ऑल्सो आई ऑलवेज फील. बहुत लोगों को लगता है अरे रोज रोज स्क्रब नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही है, रोज रोज स्क्रब नहीं करना चाहिए अगर हम स्क्रब को बहुत ज्यादा देर तक करते हैं. अच्छा। अगर कुछ सेकंड्स के लिए मैं नहाने के वक्त हमेशा एक स्क्रब इस्तेमाल करती हूँ कोई भी. मैं तो घर
1: के आटे और कच्चे दूध का
0: बहुत सारी चीजें डालती हूँ मैं.
1: ऑलमोस्ट
0: 25 हर्ब्स डालती हूँ.
1: okay.
0: और वो हर्ब्स और आजकल तो मैं बहुत ज्यादा उनको रिलीजियस देने के लिए, आपकी स्किन को और अच्छा ब्रीदिंग देने के लिए थोड़ी सी पीली सरसों और काले तिल भी डालती हूँ, गुलाब के फूल डालती हूँ. तो ये सारी चीजें डाल के जब हम एक स्क्रब करते हैं, बट स्क्रब ऐसा नहीं कि स्क्रब लगा के बस स्क्रब करते जाएं, तो वो तो आपकी स्किन जो है ऊपर से खराब होने लग जाती है. तो बहुत ही हल्का स्क्रब करना है और कुछ सेकेंड्स के लिए, 5 से 10 सेकेंड मैक्सिमम. अगर आप हर रोज कर लें, बिलीव मी इतने साल हो गए, मैंने कभी जब फेशियल कराते हैं लोग ब्लैक हेड्स निकलवाते हैं, आई नेवर गॉन फॉर दैट. मैं कभी ब्लैक हेड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, ब्लैक हेड्स होने का चांस ही नहीं होता. क्योंकि मिट्टी धूल जो आपके स्किन के अंदर ऑयल तो निकलना है ना आपके पोर्स से, तो उसके अंदर जब मिट्टी और धूल जम जाती है तो ब्लैक हेड्स बनते हैं. और अगर ब्लैक हेड्स को ना निकाला जाए तो वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं. और ब्लैक हेड ही ना बनने देना, आपने हर रोज हल्का सा स्क्रब कर लिया, मामूली सा स्क्रब कर लीजिए. आप चाहें तो सिर्फ पीली सरसों डाल के भी स्क्रब कर सकते हैं.
1: पीली सरसों से का नया कॉन्सेप्ट,
0: क्यों पीली सरसों गोल है ना, गोल से आपकी स्किन खराब नहीं होती. या आप ये जो होता है खसखस डाल लीजिए,
1: उसको दरदरा पीसना नहीं है
0: ना. आप सिर्फ थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा उसमें क्योलिन पाउडर डालें तो बहुत अच्छी बात है. और उसके अंदर नहीं तो थोड़ा सा खसखस भी डाल लीजिए. ये कुछ भी नहीं किया ना तो आपको ये बहुत ही हल्का और इजीली बनने वाला स्क्रब है. अब ये स्क्रब आप लगाएंगे तो आपके जो गोल है कभी भी आपके स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाएगा. तो आपने जरा सब्सक्राइब किया, जितने भी मिट्टी विट्टी है, जितना भी धूल है, वो सब निकल जाएगी है ना. आपकी स्किन साफ हो जाएगी, ब्लैक हेड निकालने का भी जरूरत ही नहीं पड़नी. और ब्लैक हेड नहीं होंगे तो एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं.
1: सारे पार्लर्स बंद होने वाले हैं क्योंकि आप रेगुलरली बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को सजेशन देते
0: हैं. लोग सुनते कहाँ हैं, सुनते हैं पर फॉलो नहीं करते
1: कुछ दिन तक.
0: लोगों को लगता है कौन इतनी मेहनत करेगा, बाजार से स्क्रब उठा लो. या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं
1: ज्यादा फैंसी लगता है.
0: कुछ लोगों को लगता है कि ये भगवान कौन रोज करेगा काम, तो काम ही नहीं. वो इतना एक देखिए कुछ सेकेंड्स आपने स्क्रब बनाया, बनाया स्क्रब लिया, आपके जहां आप नहा रहे हैं साबुन रखा है वहीं स्क्रब रख लीजिए. तो फेस पे स्क्रब कीजिए, बॉडी पे साबुन लगा लीजिए. हाउ डज इट मैटर, हमें इतना सा टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड्स. तो वो सेकंड्स दे दें तो आपकी स्किन देखिए कितनी खूबसूरत बन जाएगी.
1: और मैम खासतौर पर मानसून सीजन की अगर हम बात कर रहे थे तो इस टाइम पे बच्चों के में हम खासतौर से देखते हैं उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है. बाहर कई बार वो नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनकी स्किन में कुछ कुछ एलर्जी हो ही जाती है, चाहे वो छोटे छोटे दानों की या कई बार बड़े बड़े दाने भी हो जाते हैं.
0: वो इसलिए है कि बाहर देखिए इस वक्त बाहर ना भी जाए, जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो आपके घर के अंदर भी आ जाते हैं. वो पनपना उनको आसान हो जाता है बिकॉज ह्यूमिडिटी है. तो जहां भी ह्यूमिडिटी होगी आपके बैक्टीरिया पनपेंगे, और जहां बैक्टीरिया पनपेंगे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. और इस वक्त मच्छर भी बहुत सारे हो जाते हैं, वो काटते हैं तो उनसे भी आपको खुजली होने शुरू जाती है, परेशानी शुरू जाती है. तरह तरह के मच्छर हैं और बहुत ही बारीक मच्छर हैं तो वो भी काट जाते हैं, तो इस वजह से भी खुजली होनी शुरू हो जाती है.
1: बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए और मुझे लग रहा है कि इन सबको लेना शुरू कर देना चाहिए. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक और अच्छा सा गाना सुन के लौट कर आते हैं और फिर आप सबके मैसेजेस लेने शुरू करते हैं. लेकिन हाँ, तब तक अभी तक आपने पर्सनल अपनी जो समस्या है वो नहीं लिख कर भेजा है तो फटाफट लिखिए ना. स्किन और हेयर से संबंधित सबकी कुछ न कुछ समस्या जरूर होती है. आपकी किस तरह की स्किन है, इस सीजन में किस तरह से रिएक्ट कर रही है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट लिख कर भेजिए और उसका समाधान पाइए डॉक्टर भारती तनेजा से, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं. और फोन मिलाने के लिए आपको क्या करना है, 2342108 डायल करना है या 2342108 आप चाहे तो सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, जरूर शामिल होगा. 9868107070.

0: join the mega plantation drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: किन और हेयर की किस तरह से केयर करनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर भारती तनेजा है जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है तो कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपने सवाल लिखकर। आपको कॉल करने के लिए नंबर चाहिए होगा तो बता देती हूँ 2342108 या 2342104, जिस पर आपको कॉल करके सवाल डायरेक्टली करना है, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और वो जरूर शामिल होगा। 9868107070 ये नंबर है व्हाट्सएप मैसेज के लिए, 9868107070। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। एक सवाल लेते हैं मैम अनीता का जो दिल्ली से आया है, शी इज 46 इयर्स ओल्ड और इन्होंने लिखा है कि इज इट ओके टू अप्लाई द फॉलोइंग टू पैक्स मिक्सड विद मिल्क और On alternate days, one मुल्तानी मिट्टी, two हल्दी उपटन, प्लीज एडवाइस।
1: दोनों को मिक्स करने की बात करें?
0: हाँ, इन्होंने कहा कि ये पैक लेती हैं alternate days पे मिक्स करके मिल्क के साथ।
1: ये दोनों पैक अलग अलग ले रही हैं।
0: हाँ,
1: एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी और दूसरी चीज क्या है,
0: हल्दी
1: दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, हल्दी उपटन भी बहुत अच्छी है। दोनों को मिक्स करना चाहिए, कर सकते हैं, बल्कि बेटर है कि मिक्स करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अकेली जो है कोई उन्होंने पैक में आई डोंट नो क्या क्या डाला होगा, ये मार्केट से बना हुआ पैक खरीद रही है, और हल्दी उपटन भी डेफिनेटली ये मार्केट से खरीद रही है, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे तो इट विल बेटर। दोनों चीजें मिक्स होना बेटर है।
0: ओके, लेकिन मैम कई बार होता है कि त्वचा की किस तरह की टाइप है, ये भी ध्यान रखना।
1: सही कहा आपने, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी,
0: क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन में रैशेज या दाने हो गए। हाँ, वो क्यों हुआ?
1: अरे दाने नहीं हो सकते, मुल्तानी मिट्टी से कभी दाने नहीं होते।
0: अच्छा।
1: आपने बीच में मिलाया क्या है, मान लीजिए एकदम आपने बहुत सारा नींबू डाल दीजिए तो नींबू आपके फेस को सूट नहीं किया, तो वो हो सकते हैं। लेकिन आपको देखने दोनों चीजें पाउडर है, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी दोनों पाउडर है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको स्किन टोनर इसमें मिक्स कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: आप गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध मिक्स कीजिए बनाने के लिए। तो जो पैक बना रहे हैं ना उसमें जो आप लिक्विड डाल रहे हैं वो अपनी स्किन के अनुसार डाल लीजिए, तो मुल्तानी मिट्टी दोनों के लिए काम आएगी, और हल्दी तो वैसे ही एंटीसेप्टिक है, इससे कोई खराबी होने के चांसेस अदरवाइज ही नहीं है।
0: ओके, दही कब डालते हैं?
1: दही हमेशा ऑयली स्किन के लिए डाला जाता है।
0: अच्छा।
1: और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दूध डाला जाता है।
0: ओके, ये ज्ञान बहुत जरूरी है।
1: हाँ, बहुत लोग सिर्फ दही लगाते हैं, उनको ये पता नहीं होता दही इज ओनली फॉर जनरली फॉर ऑयली स्किन और दूध इज गुड फॉर ड्राई स्किन।
0: हाँ, तो ये अब बालों पर आ जाते हैं, स्किन और हेयर दोनों की बात हो रही है, तो एक सवाल आ गया है पैंथर तोमर का। इन्होंने बहुत सारे सवाल किए वैसे तो, लेकिन इन्होंने कहा है कि मॉनसून के मौसम में डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, इसके कारण क्या है और उपाय क्या है, पहला सवाल है। पहले इसकी
1: एक करके लेते हैं।
0: हाँ।
1: सबसे इम्पोर्टेंट है कि डैंड्रफ क्यों हो जाती है, जब हम बाल गीले होते हैं ना हमारे, हम बारिश से होकर आए हैं और गीले बालों को मैंने बताया कि अगर हम धोते नहीं है तो मिट्टी धूल बीच में ही रह जाती है, ऊपर से बल्कि पानी ने उसको और दबा दिया। ऑयल
0: हाँ।
1: वैसे भी इन दिनों में ह्यूमिडिटी में ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है, ऑयल
0: हाँ।
1: निकल नहीं पाता बाहर, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर बालों में डैंड्रफ हो जाती है। तो डैंड्रफ अगर हो गई है तो आपको एक तो वॉश ज्यादा करना है, आप बाहर से आए तो 100% वॉश करना ही करना है, गीले होगा तो वॉश करना ही करना है, अदरवाइज भी हफ्ते में 3 बार वॉश कर लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें और उसके बाद कंडीशनिंग जरूर करें। कंडीशनर लगाते वक्त स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना, वन हैज टू वेरी वेरी केयरफुल कि स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना, आपको बालों के अंदर कंडीशनर लगाना है।
0: अच्छा।
1: और उसको लगाने के बाद ना एक कॉम लेके उसको कॉम कर दीजिए, 2-3 मिनट इंतजार कीजिए और फिर उसको वॉश कर दीजिए, तो ये कंडीशनर जो है आपके बालों को कंडीशनर कर देगा। अगर बाजार में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाल धोने के बाद अगर आप चाहें सिर्फ स्टाइलिंग करनी है, कंडीशनर लगा ले तो हमेशा ही अच्छा रहता है। स्टाइलिंग के लिए आपके घर में इतनी चीजें, आप बाहर जाएं आपके गार्डन में जरूर आपको मिल जाएगा एलोवेरा, है ना। एलोवेरा को आप धोइए, उसको टेढ़ा कीजिए, नीचे से टेढ़ा काटिए, कुछ देर रख दीजिए, उससे पीला पीला एक लिक्विड निकलेगा, उसको निकल जाने दीजिए, उसके अंदर का जेल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी में पीजिए, आपको पीस लीजिए मिक्सी में, आपके लिए इतना अच्छा वो
0: कंडीशनर
1: बन जाएगा। और बालों के फ्रिजी जो हो रहे हैं ना वो उसको फ्रिजीनेस कम करके स्टाइल करने के,
0: उसको लगाना है। कितनी देर है मैम?
1: वो लगा के ही रखना है।
0: अच्छा, वो शैम्पू नहीं, उसके बाद धोना नहीं?
1: दो बातें हैं।
0: हाँ।
1: हम अगर तो बालों के कोई प्रॉब्लम है, गिर रहे हैं, उसके लिए लगा रहे हैं तो स्कैल्प पे लगाना है।

0: अच्छा,
1: और उसको रखना है और सुबह
0: धो सकते हैं। गिरने के लिए भी फायदेमंद होते हैं?
1: हाँ, गिरने के लिए भी फायदेमंद है। और अगर सिर्फ आपको फ्रिजीनेस कम करनी है तो उसमें जरा सा, अगर बहुत ही ज्यादा फ्रिजीनेस है तो उसमें जरा सा ग्लिसरीन मिक्स करके आप बालों में लगा लीजिए, आपके बालों की फ्रिजीनेस कम हो जाएगी।
0: उसको छोड़ देना है, उसको वॉश नहीं करना।
1: हाँ हाँ, वो स्टाइलिंग के लिए काम आ जाएगा। घर में आपके अलसी होगी, आजकल इतने हर कोई फ्लैक्स सीड रखते हैं। हाँ। खाते हैं हम लोग, सब लोग हम लोग आजकल फ्लैक्स सीड खाते हैं। अभी तो पुरानी चीज, देखिए मुझे याद है हमारी दादी जो है वो हमेशा बनाती थी फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाया करती थी।
0: हाँ।
1: तो वो खिलाती थी, तो अभी तो फ्लैक्स सीड्स हम हर रोज ही खाते हैं। तो फ्लैक्स सीड थोड़े से लीजिए, उनको बॉयल कर लीजिए, पीस के बॉयल कर लेंगे तो जल्दी से उसका गुदा निकल जाएगा, उसमें से थोड़ी सी गम जैसा एक निकलता है, तो उसका जो पल्प जो है निकले उस छान लीजिए, तो उसका जो एकदम जो गूदा निकलेगा छानने के बाद, उसको आप स्टाइलिंग के लिए काम कीजिए। अकर्ली वाला है जरा सा आप वो लगा के, अलसी का जो गुदा है उसको जेल निकलता है, मैं देखते जेल, जेल बन जाता है। उस जेल को अपने बालों में लगाइए और नीचे से बालों को पकड़ के ऊपर को स्क्रंच कर दीजिए, तो ऐसे बालों का कर्ल, अगर कर्ली हेयर है तो सुंदर कर्ल हो जाएंगे, तो स्टाइलिंग का काम हो गया। तो आपको स्टाइलिंग जेल लेने की जरूरत ही नहीं है।
0: उसके बाद उसको वॉश नहीं करेगी, ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट आप बता रही है कि वॉश नहीं करना है, उसको लगा के रखना है।
1: ये स्टाइलिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए बालों में लगाना,
0: कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं,
1: नॉट एट ऑल, बल्कि नॉर्मल आप बाजार से जो खरीदते हैं। देखिए कर्लिंग के लिए जो स्टाइलिंग जेल्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव,
0: मे बी हार्मफुल आल्सो।
1: आजकल तो बहुत ध्यान दिया जाता है मार्केट से, आज गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है कि आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में बना हुआ यूज करें तो सस्ता सुंदर टिकाऊ।
0: हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, क्या बारिश के पानी में भीगने से बाल खराब होते हैं?
1: देखिए बाल खराब होते हैं अगर आप उन्हीं के अंदर आपने रखे रखा उनको
0: वॉश नहीं किया तो। मॉनसून में अचानक बाल झड़ना क्यों बढ़ जाता है?
1: क्योंकि हम लोग वही बात है कि ध्यान नहीं देते, बालों को वॉश नहीं करते। इन दिनों में वॉशिंग ज्यादा जरूरी है, जबकि लगता है ना कि इन दिनों में तो ह्यूमिडिटी इतनी जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, बाल तो मेरे सही लग रहे हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन इन दिनों में आपको हफ्ते में 3 बार वॉश करना जरूरी है।
0: एक सवाल इन्होंने और भी लिखा है, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप ये सब बातें बता चुकी हैं। इस मौसम में घमोरियां और एक्जिमा क्यों बढ़ती है? इसके बचाव के कारण है, आपने बता दिया था कि इन्फेक्शन होते हैं, आपको किस तरह से उससे बचना है
1: जी।
0: और भी बहुत सारे सवाल, बड़े लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ूंगी आराम से तभी ले पाऊंगी। आप क्रिस्प सवाल छोटा सा पूछिए और उसका जवाब आप जानिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सवाल शामिल होने के चांसेस तभी होते हैं जब क्लियर हो सब कुछ। मैम, कम उम्र में सिर के बालों का पक जाना और दाढ़ी के बालों का पक जाना या सफेद हो जाना, इसका उपाय बताइए। अजय कुमार
1: आजकल देखिए
0: छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं जी।
1: पहले बहुत जब बाल सफेद होते थे बुढ़े होने की बात होती थी।
0: हाँ।
1: आजकल जवानी में क्या बच्चों के बाल सफेद होने लग गए हैं। कुछ तो हमारे फर्क आता जा रहा है, हमारे खान पान में भी फर्क आता हाँ। जा रहा है, और कुछ एटमोस्फेयर में फर्क आता जा रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम में, कई हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनकी वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, तो आजकल बहुत जल्दी जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं। फिर हम केमिकल्स लगाते हैं तो बाल सफेद होते हैं। कुछ बाहर की पॉल्यूशन जो है इतनी ज्यादा है, पोल्यूशन में इतने तरह के कहना चाहिए एलिमेंट्स मिले हुए हैं जो कि आपके बालों को सफेद कर रहे हैं, तो बालों के सफेद होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने बात करनी है तो फिर आपको बहुत सारा चेकअप कराने की जरूरत पड़ती है कि बाल क्यों जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो उनको फिर जब सफेद हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा हीना लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके बालों को फायदा हो सकता है।
0: इसी बीच एक सवाल आया है, उनको लेते हैं। हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून
2: जी, मैं दिल्ली से लुबना बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी, बोलिए बोलिए
2: जी। मेरा सवाल है, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
2: जी, मेरा सवाल ये है कि माय एज इज 34 और मेरे चेहरे पे ओपन पोर्स दिखाई देते हैं अब, तो वो थोड़ा सा यू नो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए एक होम रेमेडी। और मेरा एक और सवाल है रिलेटेड टू माय हेयर,
1: पहले एक एक करके ले आपका जो पहला है ओपन पोर्स के लिए, तो घर में आपके पता है आपके किचन में बहुत ही बढ़िया चीज पड़ी हुई है, वो है टोमेटो। तो आप टोमेटो को बीच में से आधा कर लीजिए और दो हिस्से कर लीजिए मतलब, और दोनों हिस्सों को लेके अपने फेस के ऊपर टोमेटो का जूस लगाना शुरू कीजिए, और उसको लगा के पूरे फेस पे 10-15 मिनट इंतजार कीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि आपके घर में ही रखी है, आप चाहे तो एलोवेरा और टोमेटो जूस को मिक्स करके भी بھی لگا سکتے ہیں, اس سے آپ کی اسکن میں سافٹنیس بھی آ جائے گی. کبھی کبھی ٹمیٹو جوس جو ہے نا کھٹا

0: होता है ना, तो थोड़े सॉफ्टनेस कम होने के चांसेस है. दोनों को मिला के लगाएंगे तो सॉफ्टनेस
1: भी मिला सकते
0: हैं, शहद भी मिला सकते हैं, ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं. तो इनसे आप लगाइए, टोमेटो से आपके डेफिनेटली ओपन पोर्स कम होंगे.
1: ओके ग्रेट. दूसरा सवाल
2: जी मैम, मैं सेकंड क्वेश्चन इज कि जो मेरा हेयर है स्पेशली जो फ्रंट एरिया है, जो फीमेल पैटर्न जो बाइलनेस होता है उस तरफ बढ़ा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में मेडिकल इशू है, थायराइड की प्रॉब्लम है. तो इसलिए मैं एक मतलब मेडिकेशन, मेरी मेडिसिन तो चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी क्या होम रेमेडी करी जाए कि यू नो वो ज्यादा इफेक्टिव हो, के दवाइयों के साथ साथ वो भी चले. मैं होम्योपैथी ले रही हूँ.
0: होम्योपैथी मेडिसिन ले रही है तो वैसे भी उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात रहती है. लेकिन अगर आपके बाल क्या है, बालों को खींच के बंद करते हैं क्या, आप चोटी बना दिए या खींच के बंद करते हैं?
2: नहीं, मैं बंद बांधती हूँ.
0: एक ही बात है, वो आप खींचते हैं बालों को, बालों को खींचना बंद कीजिए. अगले बालों को स्पेशली थोड़ा सा सॉफ्ट रहने दीजिए, चाहे कटवा के आप उसको आगे से छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए बालों को. जैसे हम खींचते हैं तो बाल आगे से जाने शुरू हो जाते हैं. दूसरा, आप मसाज किया कीजिए हफ्ते में एक बार जरूर. कोई ऑयल मसाज कर सकते हैं, और अगर बाल ऑयली है तो हेयर टॉनिक, कोई भी अच्छा सा हेयर टॉनिक ले लीजिए. आजकल इतने अच्छे हेयर टॉनिक्स अवेलेबल है जिसके अंदर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं, वो भी डालते हैं. आप होम्योपैथिक जिससे ले रहे हैं ना थायराइड के लिए, उनको बोलिए हमारे पास ना होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है, जो हम खाएं और लगाएं दोनों करने से हमारे बाल जो हैं वो काफी हद तक वापस भी आ जाते हैं. अभी तो आपके बहुत ज्यादा दूर गए नहीं है ना, अभी अभी तो आपकी उम्र ही कम है, तो आपके बाल अभी अभी अभी फॉलिकल्स होंगे, तो उनको आप जरूर फॉलिकल्स को दोबारा से ला सकती हैं अगर आप मसाज करें और साथ में आप अपना मेडिसिन खाएं और लगाएं. और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो किसी पार्लर में जाके ओजोन ट्रीटमेंट एक मिलता है, तो ओजोन से या लेजर से अपनी क्या है, ओजोन या लेजर से जो आपके बाल चले गए ना, फॉलिकल्स चले गए हैं वो वापिस आ जाते हैं. अगर अभी थोड़ी देर हुए, जैसे 25 साल तो नहीं हुए ना गए हुए, कुछ साल हुए या दो चार साल ही होंगे तो आ सकते हैं. और एक
1: उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं?
0: नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. और एक बात और बहुत
1: इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग ना कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले सवाल ये रहता है कि कहीं सच साइड इफेक्ट ना हो.
0: सच बात है. और एक ना आजकल कॉपर पेप्टाइड वाले हेयर टॉनिक मिलते हैं जिनमें कॉपर पेप्टाइड रहता है, तो कॉपर पेप्टाइड जो है आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको भी वापस लेके आता है, और जो आपके और अभी बाल हैं उनको भी मोटा कर देते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो मोटे हो जाएंगे तो खूबसूरत लगने लग जाएंगे और ज्यादा लगने लग जाएंगे.
1: एक और सवाल इस बीच आया है, उनसे बात करते हैं. हेलो
3: हेलो.
1: हाँ जी, कौन बोल रहे
3: हैं? बात कर रहा हूँ, मेरा प्यार भाई, नमस्कार.
0: हाँ जी नमस्कार.
3: मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे चेचक के दाग जाते हैं चेहरे पे, ये किसी सर्जरी वगैरह से ठीक हो सकते हैं?
0: फिर से बोले क्या है आप?
1: चेचक के दाग सर,
0: चेचक के दाग
1: सर्जरी से ठीक हो सकते हैं?
0: अरे चेचक के दाग के लिए सर्जरी तो बहुत ही मुश्किल काम है, पूरी स्किन ही आपकी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत वाली बात है और लंबा काम है. आजकल अगर आपने चेचक के दाग आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं होती, ऊपर से ही हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स कर देते हैं. कुछ मशीन्स हैं हमारे पास, लेजर है, कुछ तरह के मास्क होते हैं, कुछ तरह की पील्स होती हैं. पूरा बताना तो इस वक्त मुश्किल है.
1: हाँ.
0: लेकिन बहुत सारे पील्स हैं, बहुत सारे मास्क हैं और बहुत सारी मशीन्स हैं जिनका हम इसका कार्बन फेशियल होता है, कार्बन की मशीन होती है, उससे आपके जो स्किन है उसको काफी हद तक रिजुविनेट भी किया जा सकता है और ऊपर से पील भी किया जा सकता है. तो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाइए. अगर आप सर्जरी की सोचेंगे ना तो पूरी स्किन आपको कहीं और से आपकी बॉडी से उठा के फेस पे लगानी पड़ेगी और मार्क्स भी होंगे. ये चिकन पॉक्स मार्क्स के लिए सही नहीं है सर्जरी.
1: ओके. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप सब फायदा उठाइए, क्योंकि समय जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने जो है वो शामिल करवाइए, क्योंकि ये जो शो है डॉक्टर भारती तनेजा ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी है और आज मॉनसून सीजन में किस तरह से त्वचा और आंखों की देखभाल की जाए इस पर आधारित है. तो आप सब फटाफट फोन करिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल पहुंचाते रहिए. 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज करिए ना 9868107070 पर. इस बीच एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है बातें करते जाएं, लेकिन गाने भी बहुत जरूरी है और ये मैम की पसंद का एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आपके सवालों के साथ.

0: स्किन केयर पर बात कर रहे हैं, हेयर केयर पर बात कर रहे हैं, तो सवाल तो बहुत सारे आने ही हैं इस सीजन में, प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाती हैं। डॉक्टर भारती तरेजा जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं हमारे बीच हैं, आप सबके मैसेजेस मैं शामिल करती हूं जो लगातार आ रहे हैं। मैं सोचती हूं कि सारे मैसेजेस शामिल होने चाहिए। अभी मुक्ता का मैसेज मुझे दिख रहा है, बोटॉक्स केराटिन विच इज गुड, आई हैव कर्ली एंड फ्रीजी हेयर्स, क्या करें?
1: ये ना एक्चुअली क्या है, बोटॉक्स एंड केराटिन दोनों अलग अलग बातें हैं। केराटिन अगर इनके फ्रिजी बाल हैं तो उसके लिए अगर इनको स्ट्रेट करना है तो थोड़ा सा बोटॉक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर केराटिन अगर उनके बालों में रफनेस है और बाल मतलब उनके बालों में जान नहीं है तो केराटिन करवाएं। केराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, बोटॉक्स से बाल सॉफ्ट बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन केराटिन से शाइन को ज्यादा ये नहीं मिलेगा, लेकिन उनको खाना मिलेगा। बाल बने केराटिन के, तो जब हमारा केराटिन कम हो जाता है तो उसके अंदर केराटिन को हम फिल करना चाहते हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो अंदर जाके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बालों को बेटर करता है। तो दोनों अलग अलग चीजें, तो इनको क्या चाहिए, दोनों ही अच्छी हैं, केराटिन भी करास्ते हैं, बोटॉक्स भी करास्ते हैं। बालों को खाना अच्छे से भरपूर देना है तो केराटिन करा लें, और शाइन देना है तो बोटॉक्स करा लें।
0: ओके, बॉडी में इचिंग होती है बहुत, उसका क्या करना है? प्रमिला कर्नाटका से बोल रही है। वैसे इचिंग की हम बात कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं ये बात करते हैं।
1: इचिंग होती है तो इनको एक्चुअली स्पेशली मॉनसून सीजन में अगर दो बार नहा लें पूरी बॉडी के बाद है, तो एक तो दो बार नहाए तो उसको अपने आप को ज्यादा फ्रेश रखें, और फिर जो इनके पार्ट्स हैं ना, जो अंदर जैसे अंडर आर्म्स है ना, जहां जहां जॉइंट्स हैं तो वहां

0: पे थोड़ा सा पाउडर लगा के रखे तो उससे इचिंग कम होगी, उन्हीं पार्ट्स में ज्यादा होती है जहां पे पसीना ज्यादा आता है, तो पसीने से बचना जरूरी है। आप चाहे तो अपने नहाने के पानी में संतरे के छिलके, आजकल संतरा तो खैर कम मिल रहा है, गुलाब के फूल ले सकते हैं, अच्छा। जैस्मिन के फ्लावर्स ले सकते हैं, जो भी फूल मिल जाते हैं इनके गार्डन में जो फूल लगे उनको भी ले सकते हैं, तो उनको डाल के रखे रात को, सुबह उस पानी से नहा लें। आजकल तो गर्म पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, उस पानी से नहा सकती हैं, उससे भी इचिंग कम होगी, और पाउडर लगा के रखे तो इचिंग कम होगी।
1: नमस्कार मैम, हाउ टू मेक द थंब राइट लेफ्ट लेग स्किन सॉफ्ट फ्रॉम डाउन, इट हैज क्रैक्स ड्यू टू ड्राइनेस, प्लीज सजेस्ट सम होम रेमेडी। खुशबू रोहिणी राय
0: समझना,
1: शुक्रिया। मुझे लग रहा है ये इन्होंने ये पूछना चाहा है कि थम के नीचे की स्किन जो है उनकी, उसको सॉफ्ट करना है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं कई बार, थम में ऐसा होता है।
0: हाँ, पैरों में कभी कभी कभी कभी, देखिए सर्दियों में लोगों में क्रैक आते हैं, कभी कभी गर्मियों में भी क्रैक आ जाते हैं, और उसकी वजह भी ये है कि जो सफाई नहीं रखते हैं, ज्यादातर उन्हीं के क्रैक्स आते हैं। तो अगर क्रैक्स इनके आ रहे हैं, पहली बार तो पेडिक्योर कराएं, खुद भी घर में पेडिक्योर कर सकती हैं, थोड़ा सा पानी में नमक और कोई भी सोप डाल के थोड़ी देर के लिए पैरों को भिगो के रखें, और जब सॉफ्ट हो जाए तो इनको, क्योंकि क्रैक्स है तो बहुत सॉफ्टली उनको स्क्रब करना है। और फिर घरेलू इलाज बताती हूँ बहुत ही अच्छा इनके लिए जिनके क्रैक्स हैं, घर में मोमबत्तियां तो पड़ी होती हैं, टूटी फूटी मोमबत्तियां जो है उनको भी संभाल के रखना चाहिए इसी काम के लिए। तो टूटी फूटी मोमबत्ती या कोई भी मोमबत्ती ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल, एक कटोरी में मोमबत्ती के छोटे छोटे पीसेस डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, हल्का गर्म कीजिए, जैसे ही गर्म करेंगे तो वो तेल में जो वैक्स है वो पिघल जाएगी, उन दोनों को अच्छे से चम्मच से मिक्स करें, और अपने हल्का गर्म होने पे, बहुत गर्म नहीं लेकिन गर्म को ही अपने क्रैक्स में डाल लीजिए, और ये रात को वॉश करने के बाद करें, और फिर पैरों को अगर हो सके तो कोई सॉक्स पहन के सो जाए, बस कुछ ही दिन करेंगे तो इनके ठीक हो जाएंगे।
1: वाओ, तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज है इसी से इंस्पायर हो रहे हैं लोग, और हर चीज की रेमेडी पूछ रहे हैं। देखिए
0: अच्छी बात है।
1: अभी पूछा, मेरा सवाल है कि 4 साल का मेरा बेटा है, उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, टैनिंग के लिए कोई रेमेडी बता दीजिए, नाम नहीं लिखा लेकिन ये सभी बच्चों के जो खेलने जाते हैं बाहर के लिए होता है सबके साथ।
0: वैसे मैं पता क्या, मैं अपनी बेटी के साथ मैंने हमेशा किया, इसलिए मैं कह सकती हूँ।
1: अच्छा,
0: हम इसमें आप थोड़ा सा घरेलू एक उपचार बना लें, प्यारा सा, बिल्कुल सॉफ्ट सा, और उसी से मसाज करके नहला दें बच्चे को, तो आप रंग जो है ना काफी हद तक साफ हो जाता है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है।
1: हाँ, इसके बिल्कुल बताइए।
0: इसके लिए घर में जितनी भी आपके पास दालें हैं उन सारी दालों को पीस लीजिए, हम 4-5 दालें जितनी भी यूज करें, उड़द की, मूंग की, अरहर की, और फिर उतना ही चावल ले लीजिए।
1: अच्छा।
0: तो सारी चीजों को इक्वली लेके इनको पीस डालिए, और जितना आपका मिक्सचर बना है उतना ही आपने चंदन पाउडर डालना है, और उतना ही उसमें मुल्तानी मिट्टी डालनी है।
1: ओके।
0: तो तीनों चीज
1: स्किन के लिए।
0: हाँ, स्किन के लिए। अभी मैं बाद में बताऊंगी ऑयली और ड्राई के लिए। अच्छा। तो पहले पाउडर बन रहा है।
1: हाँ, हाँ।
0: उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से गुलाब के फूल डाल लीजिए, तो ये आपका स्क्रब बन गया। आप चाहे तो इसमें बच्चों के लिए ना बारीक पीसिएगा, बहुत दर्द रहा नहीं होना चाहिए, और पीस नहीं तो बच्चों के लिए आप सिर्फ, सबसे अच्छा यही है जैसे मैंने पहले बताया कि चंदन पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, केलन पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर सिर्फ खसखस डाल लीजिए।
1: अच्छा।
0: या फिर पीली सरसों डाल लीजिए।
1: कितना?
0: थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे कि वो
1: पीस कर,
0: पीसना नहीं, ऐसी खसखस बहुत पतली होती है।
1: हाँ।
0: और चुभती नहीं है, गोल है ना, किसी भी बच्चे को चुभेगी नहीं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए, हाँ हल्दी डाल लीजिए, मलाई डाल लीजिए, और चंदन तो है ही है इसके अंदर, और अगर बहुत मतलब मलाई अच्छा है बच्चों के लिए, मलाई अच्छी है, और थोड़ा चाहे तो ग्लिसरिन भी डाल सकते हैं या शहद डाल लीजिए, और दूध डाल के इसका अच्छे से एक स्क्रब बना लीजिए। रोज इससे नहलाना शुरू कीजिए, हल्दी भी गोरा करेगी। आप गोरा करने के लिए एक है केसर, तो दूध में थोड़ी देर केसर डाल के रख दीजिए तो केसरी दूध बन जाएगा, उससे इसका स्क्रब बना लें।
1: ओके।
0: ये अगर खसखस से या पीली सरसों से कभी भी उनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, तो स्क्रब है पर स्क्रब जैसा नहीं है, सो दैट विल डेफिनेटली वर्क, और मैं पक्का कह सकती हूँ रंग गोरा जरूर होता है। मैंने अपनी बेटी का किया इसलिए मैं जानती हूँ।
1: अच्छा। ये सभी बच्चों की समस्या खास तौर पर होती है कि जो उनका नेचुरल कलर है ना वो चला जाता है क्योंकि वो धूप में खेल रहे होते हैं।
0: जी जी जी।
1: कई बार वो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है।
0: हाँ, ये कैलामाइन से केयोलिन से
1: पूरी बॉडी पे लगा बनाया जा सकता है?
0: पूरी बॉडी को मसाज कीजिए थोड़ा, पूरी बॉडी खुद बनाएंगे ना तो

0: रहना भी नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मसाज कर लीजिए, बस मसाज करते करते 5-2 मिनट रख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धो दीजिए पर अच्छे से मसाज कर दीजिए।
1: कोई ऑयल नहीं डालना इसमें,
0: मलाई डाली,
1: मलाई डाली,
0: मलाई नहीं डाल रहे तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, आलमंड ऑयल डाल लीजिए,
1: वाइटमिन
0: ई ऑयल डाल लीजिए तो पूरी बॉडी को नरिशमेंट भी मिलती है, कुछ भी डाल सकते हैं।
1: एक सवाल निधि का आया है प्रयागराज से, इन्होंने कहा कि क्या रेमेडीज है व्हाइट हेड्स के लिए।
0: व्हाइट हेड्स को एक्चुअली वो अंदर आपका जो है ना ऑयल तो निकला है लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, अगर तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं तो आप कोई पिन लेके किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, किसी बाले में पिन लेके थोड़ा सा निकाल देते हैं व्हाइट हेड्स को। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास होती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम देते हैं खाने को तो अंदर से ही ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और व्हाइट हेड्स होने बंद हो जाते हैं।
1: ओके
0: जी
1: पैंथर तोमर, अब हमने जो बातें की ना वो सारी हमने स्किन पर क्या लगाएं की बात करी लेकिन हम क्या खाएं पर बात करते हैं,
0: बहुत
1: जिससे स्किन अपने आप ही ग्लो करे या फिर बाल अपने आप ही अच्छे रहें।
0: ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को लोग से हम लोग सोचते हैं फेशियल कराएंगे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, पर हाँ। फेशियल जरूर फायदा देता है, आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, आपकी स्किन को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो जो आप खा रहे हैं वो लगेगा, लेकिन खा क्या रहे हैं यही तो इम्पोर्टेंट है।
1: हाँ।
0: अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते, अगर हमारी स्किन अब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, हम मेडिसिन खा रहे हैं उनका असर बहुत ज्यादा होता है, और खाने में क्या खाएं, पानी जरूर पीना है अच्छे से, ताकि आपके जो आप खाएं वो आपकी पूरी बॉडी में पहुंच पाए और आपके जितने टॉक्सिन्स हैं बाहर निकल पाए, तो दिन में 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पिए, खाने में फल फ्रूट खाएं और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएं, प्रोटीन से आपके बाल आपके नेल्स आपके वैसे भी आपकी पूरी बॉडी जो बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है, तो कैल्शियम जरूरी है आपके बाल और उसको नेल्स को बनाने के लिए भी, तो खाने को अच्छा संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं फ्रूट्स जरूर ऐड करें, आजकल कलरफुल वेजिटेबल्स इतनी मिल जाती हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स अपने खाने में ऐड कीजिए, कलरफुल वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को आपके बालों को आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं, तो वो भी खाएं, प्रोटीन का अमाउंट जरूर है, दूध बच्चे पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पनीर बना के खिला दीजिए, पनीर आजकल इतने ज्यादा रेसिपीज हैं, सिर्फ पनीर से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है पता है, चॉकलेट डाल के बच्चों को इतनी पसंद आती है, जिसमें खजूर डालिए चॉकलेट डालिए नहीं डाली उसी से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है, जिसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं और बड़ों को भी जिनको शुगर है उनको भी नुकसान नहीं होता, तो खाने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संतुलित आहार लेना जरूरी है, विटामिन सी विटामिन ई विटामिन ये सारे विटामिन भी होने चाहिए, पूरी फूड की अगर हम बनाए तो रेसिपीज अलग अलग बनाए जा सकते हैं, आप स्प्राउटेड दाल खाइए इसमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है, जो मैं तो वेजिटेरियंस की बात ज्यादा करती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे वही याद रहता है, आप चिकन खाइए फिश खाइए जो बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन स्प्राउटेड दाल खाइए, और स्प्राउटेड दाल के एक बहुत अच्छा एक छोटी सी रेसिपी क्विकली बनाती हूँ, स्प्राउटेड दाल को हल्का सा आप चाहें तो स्टीम कर सकते हैं माइक्रोवेव कर सकते हैं नहीं तो उसको वैसे भी खा सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डालिए नींबू डालिए, देखिए सारे विटामिन आते जा रहे हैं, पनीर डालिए नींबू डालिए टमाटर डालिए थोड़ा सा प्याज डालिए और उसको चाट मसाला डालिए के इतनी स्वाद आपकी चाट बन जाती है, बच्चों को भी पसंद है बड़ों को भी पसंद है।
1: बिल्कुल एक सवाल जो लगभग सभी 40+ जो जो लेडीज हैं उनके लिए या फिर जेंट्स के लिए भी ये होता है कि उनके थोड़े दिन बाद ना बाल उड़ने लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और 47 साल की उम्र है जो ये सवाल आया उन्होंने लिखा है, इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, इन्होंने लिखा है कि पीछे से उनके बाल हल्के हो गए हैं और रूखे और बेजान लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं?
0: उड़ गए हैं तो वैसे मैं बता रही थी अभी मैंने बताया भी था कि कोई हेयर टॉनिक मार्केट से ले सकते हैं वो लगा सकते हैं जिसमें कॉपर पेप्टाइड हो तो पक्की बात है कि बाल वापस आ ही जाएंगे, लेकिन घर में भी अगर चाहें तो मेथी ले सकते हैं, मेथी को तेल में डालिए, मेथी आंवला शिकरकंद इन सबको तेल में डालिए, उस तेल को बॉयल कर लीजिए या पानी में डाल के उसको बॉयल कर लीजिए, जब 1/4 रह जाए तो उसके अंदर इसके अंदर आजकल रोजमेरी के लीव बड़े आसानी से बाजार से मिल रहे हैं तो रोजमेरी की लीव्स डाल सकते हैं, घर में रोज आप खाना सब्जी बनाते हैं ना उसके उससे छिलके प्याज के छिलकों को रख लीजिए वो भी उसमें डाल दीजिए और प्याज डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो नहीं तो फिर कलौंजी डाल लीजिए वो भी प्याज का ही है पार्ट, तो इसका कलौंजी का तेल डाला लगाया जाता है, अगर तेल लगाना चाहते हैं और कलौंजी को पानी में डाल, जैसे मैंने बाकी चीजें बताई सारी चीजों में कलौंजी भी डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए प्याज के छिलके डाल लीजिए, इनको बॉयल कीजिए, तो बॉयल करने के बाद जब 1/3 1/4 रह जाए पानी वो आपका एक हेयर टॉनिक बन गया।

0: तो उस हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, मसाज कीजिए, डेफिनेटली बाल आ जाएंगे। अभी गिरे तो पक्का आ जाएंगे।
1: और कंचन सोनिया बिहार से सेम समस्या लिख रहे हैं, 32 इयर्स की एज है, बहुत ज्यादा इनके बाल झड़ते हैं, कुछ इलाज बता दीजिए।
0: अभी बताया मैंने,
1: तो जो आपने बताया ये काम कर जाएगा। वैसे सवाल इतने सारे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि एक दो घंटे और ले लेते हैं आपका लेकिन क्या करें, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन चलते चलते एक दो सवाल तो आपसे ले ही लेती हूँ, जो बहुत जरूरी है कि इस सीजन में क्या होता है, ऑलरेडी स्किन पर मॉइस्चर होता है, तेल जैसा लगता रहता है, तो क्रीम लगाएं या नहीं लगाएं?
0: मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में पानी ज्यादा होता है, ऑयल कम होता है, तो मॉइस्चराइजर लगाइए। तो मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ह्यूमिड है, ह्यूमिड कितना भी हो मौसम, लेकिन मॉइस्चराइजर की फिर भी जरूरत होती है। पानी और तेल दोनों का बैलेंस जरूरी है।
1: और पिगमेंटेशन, इसकी समस्या बढ़ जाती है?
0: हाँ, पिगमेंटेशन है तो आपको मैं बताती हूँ, एलोवेरा का आप जेल लगाइए, उसके अंदर मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट मिलता है।
1: अच्छा,
0: मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट डालिए, दोनों को मिक्स कीजिए, लगाइए, पिगमेंटेशन कम हो जाएगी।
1: एक्सट्रैक्ट अलग से मिलता है?
0: हाँ, बाजार से मिल जाता है। लेकिन
1: पिगमेंटेशन पाउडर भी डाल सकते हैं क्या?
0: पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगी, पिगमेंटेशन जो है बहुत बड़ी समस्या है, उसके अंदर तक जाके वजह जानना जरूरी है, वजह को हटाना जरूरी है।
1: एक बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल, चावल का पानी, लोग चावल के बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए वो बता देंगे।
0: कोरियंस ने सिखा दिया, हम यूज कर रहे हैं पहले से चावल,
1: तो क्या हम हमारे हर जाएंगे?
0: हाँ, हमारे हर स्क्रब में चावल का आटा रहता है।
1: हाँ,
0: तो हम तो पहले चावल इस्तेमाल
1: कर रहे हैं, तो ये चावल का पानी कितना कारगर है?
0: चावल का पानी जो है स्प्रे की तरह अपने बालों में लगाए, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, फेस पे लगाए, फेस भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा कारगर है। आप रोज चावल की मांड जो है ना फेंकते हैं ना, उसको मत फेंकिए, उसको चावल खाइए, उसकी मांड जो फेंक रहे हैं उसको फेस पे लगाइए, बालों में लगाइए, फेस भी अच्छा और बाल भी अच्छे।
1: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने का वक्त तो आ गया है, लेकिन एक स्किन केयर जाते जाते पूछ लेती हूँ, रात में सोने से पहले क्या करें हम?
0: सोने से पहले फेस को वॉश करें, और एज के हिसाब से आप ऑयल लगाएं या कोई कोलेजन लगाएं या एचए क्रीम लगाएं, वो जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं जरूरी जाने से पहले फटाफट बताना चाहूंगी, लोगों को लगता है कि आजकल सनस्क्रीन की जरूरत है, बादल इतने तो सन तो है ही नहीं, उनको दिख नहीं रहा, लेकिन सन की रेज है, तो प्लीज सनस्क्रीन लगा के ही निकले।
1: ओके, ग्रेट मैम, ऐसा लग रहा है पूछती जाऊं लेकिन क्या करूं टाइम है जिसकी फाउंडेशन हम मैटर करती है, क्योंकि अभी प्रियंका आ गई है अगला शो आशियाना लेकर, तो वो शुरू करेंगी अपना शो। उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आई स्टूडियो में, इतना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हम सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो ये थी डॉक्टर भारती तनेजा, ब्यूटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी आज बात की स्किन एंड हेयर केयर इन मानसून पर। आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी थी, फिलहाल जाती हूँ, प्रियंका आ गई है, टाटा बाय, टेक केयर, अपनी स्किन का ढेर सारा ख्याल रखिए, पानी पीजिए खूब सारा, और हाँ, जो जो मैम ने बताया है उसको जरूर फॉलो करिएगा। बाय बाय।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन में जीएमसी बालयोगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू

ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगमांग से बातचीत की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरक्षा दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुर्ग स्थित एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणीय भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने डकेडा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। भारत ने 19 जुलाई को वाणिज्य जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले को लेकर आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लदानोव को तलब किया। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फरबाद में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूं आशियाना प्रोग्राम में। आज हमारे साथ वुमेन स्पेशल सेगमेंट रहता है और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके जज्बों की, उनके हौसलों की, उनके प्रयासों की, उनकी सफलता की। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की SI सीमा ढाका की।

मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ

0: रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने

0: उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर

0: लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से।

0: लकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर,
0: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद,
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
0: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
0: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं।
1: जी
0: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
0: जी
1: तो बिमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
0: अजीत जी आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला?
0: जी
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
0: जी
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीददारी का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: विमलेश जी लेन देन तो होता था लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक
2: निर्वाचन बा आम पौराचल निर्वाचन पे तैयारी करबा ताहे थिला आजर मुख्य प्रसंग सेति पई आमे डोर टू डोर सर्वे करिवु अक्टूबर द्वितीय सप्ताह द्वितीय फटनाइट रे ए डोर टू डोर सर्वे हे ता नवंबर मास पर्यंत चालिवो एवं सेही डोर टू डोर सर्वे माध्यम रे आमर वोटर लिस्ट तयारी होबो।
3: जनगणना पई पंचायत ओ पौर निर्वाचन रे सामान्य विलंब हेबो। पुरुणा बैलेट बॉक्स रो मरामती नुवा बैलेट बॉक्स क्रय नै बैठक रे निष्पत्ति होईछि। जणे भोटर दुईटी स्थान रे जेपरी भोट न दे परिवे से नै समस्त व्यवस्था करा जिवो बोली राज्य निर्वाचन आयोग को सचिव कहिसंती। भुवनेश्वर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कार्यालय रे आज अपराह्न रे राज्य रे चालीथिबा स्वतंत्र सघन संशोधन 2026 एसआर संपर्कित एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर संथगोपालन गणमाध्यम

0: ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଲା ତିନି ରଥ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45।
1: चाय ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
4: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
2: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
3: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो।
5: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
6: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
5: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
6: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
5: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
6: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
8: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में

0: मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है? आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल ठीक

0: से कर रहे हैं कि नहीं, क्या करने की आवश्यकता है कि हमारा दिल लंबे समय तक हमारा साथ दे, यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस की, हृदय रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए जैसे हर बार हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका तारुफ कराते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश, आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार।
0: और डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए। तो लीजिए, आज वो दिन आ गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और वो आपकी जितनी परेशानियां हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुंचेंगे ये आपको वादा करना है। मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी हमारे फोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप वैसे जानते हैं, लेकिन उन श्रोताओं को जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग से के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स है जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें, हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
2: जरूर। मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। बहुत खुश हूँ
0: जी डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारे परिधि यहाँ हैं और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के उस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, व्हाट्सएप का भी मैसेज बॉक्स खुला है और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082 और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए। व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी।
1: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक ठीक पेरिकार्डियम होता है उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, इसमें कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
0: अच्छा।
1: बहुत मेलिग्नेंसी, तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं।

0: लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके।
1: जी, लेकिन हम हर विषय पर बात कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिखकर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे। इंतजार कर रहे हैं हमें आपके प्रश्नों का, इंतजार कर रहे हैं हम।

0: आपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और बिल्कुल दिल तो चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब नमस्कार,
1: मेरा पूछना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खट्टे पदार्थ हैं वो दिल के लिए हानिकारक है, क्या एलोपैथ में भी ऐसा माना जाता है या मिथक है? दूसरा एक बीमारी है पैल्पिटेशन, दिल घबराना, क्या ये एक डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है, कृपया विस्तार से बताएं।
2: खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसम्मी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं
0: जी।
2: दूसरा, टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है, जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जाइटी में तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने कफ सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी ये होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, दौड़ते समय अगर आपकी हार्ट बीट 100 जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्ट बीट 90-100 चल रही है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
0: इससे क्या हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं?
2: हार्ट अटैक के चांसेस है, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत लंबे समय तक ज्यादा चल रही है तो इससे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है।
0: ओके, और इट कैन लीड टू फर्दर
2: हार्ट फेलियर लेटर ऑन।
0: ओके,
2: तो हम उसे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं।
0: ओके, तो दिखाना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो किस तरह से पता लगे, मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आदमी सचेत हो जाए कि हाँ मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो लोग जाते नहीं है, चेकअप भी रूटीनली कई लोग नहीं कराते।
2: हमेशा याद रखिये, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आपको कोई सिम्टम नहीं था, सडनली आपने महसूस किया कि मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, मैं चलता हूं तो मुझे सांस फूलने लगती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आजकल, मैं खड़ा होता हूं तो सडनली आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, मेरे दिल की धड़कन कम चल रही है, मेरे चलने में सांस फूलने लगी, पहले मैं 2 स्टेयर चल लेता था अब नहीं चल पाता हूं, हमने अपने नाखूनों में नीलापन देखना शुरू कर दिया, पैरों में सूजन देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे इंगित करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर और तुरंत इसका इलाज करें
0: जी। तो अपने शरीर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कुछ बदलाव अगर फील होता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और कारणों की बात हम कर रहे थे, आज परिधि हमारे साथ हैं, बहुत सारे कारण आपने बताया हो सकते हैं हृदय रोग के, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप चाह रही थी युवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करना।
3: बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा पहला प्रश्न था कि पहले हार्ट डिजीजेस तो ज्यादातर 50-60 साल उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 25-40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमें सुनने में अब ज्यादा आने लगा है। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ये बढ़ते ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है?
2: देखो, जो हार्ट अटैक बचपन में यूथ में होता था वो हार्ट की बीमारी होती थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, जो गरीबी की बीमारी थी, उनको वाल्व में इन्फेक्शन हुआ, वाल्व खराब हो गया। दूसरी होती थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो बचपन में पैदा होते ही होती थी, यूथ में ही आ जाती थी। कुछ बीमारी होती थी कार्डियोमायोपैथी, जो यूथ में होती थी। अब यूथ में जो हम आप जिस बात पे कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया, हाँ यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जो आप खाते पीते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स है उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिगरेट

0: हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का है उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30 से 40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा इसके माँ बाप को हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के रखता तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है, और तीसरा है आबादी बढ़ रही है, हमारा यूट्यूब बढ़ रहा है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो पता भी लग जाता
1: है, पता लग जाता है, ये भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जब आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते एक्सरसाइज करते करते और एज भी कम है और वो रेगुलर वो रहा है हैबिचुअल इन एक्सरसाइज।

0: आपको हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के ही रखता तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है। और तीसरा है, आबादी बढ़ रही है, हमारा YouTube बढ़ रहा है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो पता भी लग जाता है।
1: ये भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जब आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते, और एज भी कम है, और वो रेगुलर वो रहा है हैबिचुअल इन एक्सरसाइज, तो हमें लगता है अरे ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो रहा है, तो क्या कारण?
0: पहली बात आप ये जान लीजिए कि हार्ट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज एक माइल्ड एक्सरसाइज है। अब 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर करते हैं तो ये मत मानिए हार्ट आपका प्रोटेक्ट है। इन लोगों में जो चीज हुई है, जैसे जिम करते करते, ये बेसिकली इनमें कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिखाई नहीं। उनको सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए।
1: अच्छा।
0: अब एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिम करते समय जिनकी डेथ हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उनको एंजाइना हुआ, उनके हार्ट में 7-8 स्टंट डले हुए थे, तो उनको एंजाइना होने लगा और उन्होंने कहा मैं जिम से एंजाइना ठीक कर लूंगा। अब वो 10 की रफ्तार से दौड़े तो हार्ट अटैक होना ही था। तो जो ये तरह की घटनाएं होती है, ज्यादातर आइदर इनमें कुछ चैनलोपैथीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हार्ट की जिसको हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस से, जिम करने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं, एक बार अपने को डॉक्टर को जरूर दिखा के करें। बहुत बार हमने देखा है जिम करने जा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर ही नापा। अब जिम करते करते एक दिन को सांस फूलने लगी तो देखा 200/100 बीपी था। अब 200/100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज की
1: जी, जी।
0: ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष उस इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया।
1: जी, कई बार ऐसा भी होता है, जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, कि हमारे हमने ये देखा है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूं, या जिम चले गए, वहां पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है, और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप बस चढ़ गए आप किसी मशीन पे, ट्रेडमिल पे, मतलब इट इज नॉट गाइडेड एज सच एंड इट इज नॉट कस्टमाइज एज सच। तो ये सारी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं, और शायद यही वो इम्पैक्ट डालती हैं जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो।
0: आपको अगर एथलीट नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, तो आप सुबह उठिए, एक नॉर्मल वॉक करिए 5-6 किलोमीटर पे। वॉक करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए। योगा में हमारे पीटी सिखाते थे, हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, थोड़ा पीछे स्ट्रेच कर लो, थोड़ा साइड में स्ट्रेच कर लो, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती है तो वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके लिए वो सफिशिएंट है। अगर आप बॉडी बनाना चाहती हैं तो किसी की सहायता लीजिए, कोई ट्रेनर की सहायता लीजिए। आप योगा करना चाहती हैं, छोटे मोटे योगा आप आराम से कर लीजिए, बट अगर आप अच्छा योगा करना चाहती हो, आप टीवी देख के करेंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे।
1: जी, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो हमारे इस प्रोग्राम में, ये फैक्टर्स जो कई बार हम इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज, या टीवी भी देख कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमको हार्म पहुंचा रहा है, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर।
2: हेलो
1: जी, नाम बता दें अपना।
2: हाँ जी, मैं श्याम, श्याम सुंदर।
1: जी जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
2: श्याम सुंदर धवन।
1: जी जी, हाँ बताएं, क्या पूछना है?
2: ऐसे है डॉक्टर साहब, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: सर, मेरी विशेषता 1903 में वारंट टाइप का मिलता था पीजीएल चंडीगढ़, सतारा 2016 में था, लोअर 16 में तो वो वाल्व।
1: डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो
0: गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि आपके मिसेज का वॉल्व सुकुड़ गया, तो क्या करें?
1: जी,
0: अगर वॉल्व सुकुड़ गया तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, अपना इको कराएं और उसका इलाज।
2: 2016
1: आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है श्याम जी, अगर आप दोबारा लगाकर बात करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि हम बात नहीं आपसे कर पा रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हमारे श्रोता हमारे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, 48 इयर्स के हैं

0: एज है इनकी और इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है. इन्होंने लिखा है जिम स्टार्ट करने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे उस पर इनका आया प्रश्न कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं जिससे पता चले कि मैं फिट हूं. चानेश्वर गोत कराची से ये हमारे श्रोता है अमर रमेश कुमार खत्री.
1: देखिए बिल्कुल है, अगर आप बहुत लाइट सा जिम करना चाहें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, आप अपनी शुगर जरूर चेक करा लें आप, और इसके पहले ये जरूर जाने कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है. आपकी सांस फूलती है तो बिना डॉक्टर के दिखाए जिम में आ जाए, आपको चलने में सीने में दर्द होता है तो बिना दिखाए, आपको चलने में चक्कर आते हैं ना जाए. तो अगर आप अच्छा जिम करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर शुगर एक ECG तो करा लें और एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से अपने एग्जामिनेशन करा लें, उसके बाद ही आप विग्रस जिम में जाए. माइल्ड जिम में हम लोग कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर करा लें, शुगर ना तो कोई दिक्कत नहीं है.
0: ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का
1: किस लेवल का जिम करना चाहते हैं.
0: बिल्कुल. प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि डिफरेंस बता दीजिए डॉक्टर साहब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का. आप बता चुके हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी. हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक हम बेसिकली एंजाइना को कहते हैं, आपके सीने में आर्टरी बंद हुई, आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, और कार्डियक अरेस्ट मतलब मरीज बेहोश होकर गिर गया हो. तो हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता और हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं होता. कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत कारण है हार्ट अटैक के.
0: तो हार्ट अटैक जब होता है तो पेन,
1: तो उसमें 10% या 20% लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है. तो हमने कहते हो बेहोश होकर गिर गया, फिर हमने CPR किया, बचा लिया, नहीं बचा पाए. तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आप बेहोश हो चुके हैं, आपका हार्ट काम करना बंद कर चुका है.
0: जी, आपने CPR का जिक्र किया, ये एक फर्स्ट एड भी बहुत जरूरी है सबको जानना, CPR जानना. तो किस तरह से वो हेल्प करता है अगर किसी को लाइफ सेव कर सकते हैं?
1: आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ इसका मतलब आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी. तो आप मसाज करके हार्ट को अगर ऊपर से दबाएंगे तो उससे भी ब्लड पंप हो जाएगा. तो हार्ट आपके पीछे हार्ट है, ऊपर से आपने चेस्ट दबाना शुरू किया तो हार्ट भी उसमें दबता है. जब हार्ट दबता है तो ब्लड पंप कर देता है. तो ट्रांजिएंट, जब तक आपको फर्स्ट एड ना आ जाए, आप कम से कम ब्रेन को ब्लड पहुंचा सकते हैं. और कार्डियक अरेस्ट तो हम 30 मिनट बाद भी रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन 3 मिनट बाद रिवाइव नहीं होता.
0: ओके, तो दैट इज व्हाई इट्स सो.
1: उस समय जब तक आपको मेडिकल हेल्प ना आए, अगर आप ढंग का कार्डियक मसाज करते रहते हैं तो ब्रेन बचा लेते हैं और पेशेंट को हो सकता है बचा भी ले जाए.
0: जी, तो अगर किसी का घर दूर है या उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है तो CPR के थ्रू उसको बचाया
1: जा सकता है. अगर वो कार्डियक अरेस्ट में उसको कोई पल्स नहीं मिल रही, उसकी सांस बंद हो गई है, तो आप CPR करके बिल्कुल, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को बचाया जा चुका है.
0: पर CPR को सीखने के लिए उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. आजकल बहुत NGOs ट्रेन करते हैं, आजकल बहुत YouTube में भी CPR के कैसे करें CPR. तो अगर आप चाहें तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं और बहुत NGOs की ट्रेनिंग देते हैं.
0: जी, तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिलेटिव या फ्रेंड या नेबर, जो भी हमें दिखता है उसकी हेल्प कर सकते हैं. हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो.
2: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में?
2: जी अमित क्या बात कर रहा हूँ मैम. मैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: जी नमस्कार अमित जी.
2: सवाल मेरा मैम ये है कि जैसे दो इंसान घर में ही कसरत करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी कोई टेस्ट कराना चाहिए?
1: नहीं, आप एक हमेशा याद रखिए, आप अगर 40 साल 50 साल के युवा हैं तो कम से कम आपका एक बार ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका मेजर होना ही चाहिए. ये तो आप करें या ना करें ये तो रूटीन है. क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप योगा करते हैं तो ये गलत है, कंट्रोल करिए उसको. तो जो एक सिंपल से टेस्ट है, आपका हीमोग्लोबिन 7 है और आप योगा करने चलेंगे, तो ये आप घर में योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है. फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान को साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेना चाहिए.
0: जी, आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे एक मैसेज दिखा है दिव्या का, बिहार से आया. हीमोग्लोबिन इनका 7.9 है, बीपी हमेशा कम रहता है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
1: हीमोग्लोबिन 7.9 क्यों है इसकी जांच करानी चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए. हो सकता है आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, हमें उसको सप्लीमेंट करना है. अगर हीमोग्लोबिन उससे ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है. 7.5 हीमोग्लोबिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है. तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच कराइए.
0: और बीपी लिखा है हमेशा कम रहता है.
1: अच्छी बात है, बीपी कम रहना कोई
0: बीपी का कुछ इशू इतना नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए आपको दिखा,
1: बिल्कुल दिखाइए आप. बहुत कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है.
0: अच्छा, तो ये टेस्ट होंगे और पता
1: चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल
0: जी. और डॉक्टर साहब सुधीर कुमार कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार.

0: डॉक्टर साहब को बुलाते ही मैडम हार्ट अपने आप ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आया करिए, इतने सारे श्रोताओं का हार्ट ठीक हो जाएगा। और हमने डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब को याद किया था, और आपने मुझे याद है आपने मैसेज भी किया था, और डॉक्टर साहब की एक कहावत हमें याद रहती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे कि आपने क्यों कहा था, क्यों कही थी ये कहावत?
1: मैंने कहा था कि देखिए, आपको अगर आपके फैमिली में आपको माँ बाप को डायबिटीज है, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, आपके माँ बाप को हार्ट अटैक है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं सही की, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आपको बीमारी बहुत जल्दी होनी है।
0: जी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा था, और अगर आप ये बात याद रखते हैं तो ये वाली बात भी याद रखते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर कुमार सुधीर जी, आपने हमें मैसेज किया, हमें याद दिलाया है डॉक्टर साहब की बात, जो और सभी श्रोताओं तक पहुंची है। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप यूं ही हमें लिखते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर।

ट्यून को चुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान संतोष सुनिबा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।

0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
0: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
0: जी
1: तो बिमलेश जी, करते हैं शुरुआत। जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला?
0: जी।
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो।
0: जी,
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
0: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
1: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी,
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम

0: उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
2: यमन भैया कहाँ हो भैया?
3: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
2: भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
3: अच्छा, क्या लिखा है?
2: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
4: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है, टिकट भी भेज दिए हैं।
1: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
4: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
4: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
4: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते
2: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।

0: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ। और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े। और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी। और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोज खोज कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
6: हैप्पी संकेन।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: अरे।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
7: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
7: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
8: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए।

0: कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांग केन। आइए आप सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन, बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Lang Dingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी. ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक, दिल से दिल तक.
6: आकाशवाणी एफएम रेनबो.
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

ट्यून को छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शो चली छि सुरीला आफ्टरनून और सुरीला आफ्टरनून शो ने मु अछि अपन को रेनबो साथी शुभश्री आज अपन को सहित अच्छा फ्रेंड्स अपन माने तो जानती जे ए रिसेंट ए रिसेंटली फिफा वर्ल्ड कप चलीला आउ मु आशा आउ विश्वास रखी छी जे आपण माने निश्चय किछि मैच टीवी पर तरे देखिथिबे अच्छा कोंत तो जेतबेले गोल दो दो बा गोल हो टिके टिके रे मिस हो जाय सेति कि पहिले आपण को भी टिके निराशा लागे ना आउ सेति बेले निजर सेई पर्टिकुलर गेम विषय रे किछि नॉलेज थाउ कि न थाउ किछि ना किछि ओपिनियन स्वत प्रवृत्त भावरे मुहरो बाहरी आसे एई जेमति से प्लेयरटा ठीक भावरे खेली पारिलानि मो नहले कोन गोलटा मिस हे जेथान ताकि एमिति बि केही केही कहि देथिबे जे से प्लेयरटा भलो खेलुनि गोल बि करि पारनि काहेकि ताको खेलिबाको दिया जाउछि के जानि आ मु जदि ता जगहरे थांती गोल संगे संगे करि देथांती केते इजी थिला सेटा सेई गोलटा करि पारे एमती अनेक कथा आमे कहि दऊ

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो किए कोथले कोट कॉल करथले हेलो सुनी पारछंती हमको हेलो बोधे साथी वर्षा कारण रो आपण माने हम सहित कनेक्ट हेई पाउनांती ठीक अछि किछि भी दुख करिवार नाही आपण ट्राई करू थांतु हम सहित कनेक्ट हवा पई देखि नबा नेक्स्ट कॉलर की हम सहित जोडी हेबा पई चेष्टा करछंती कोट जोडी हि छंती हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार के कोथले कोट कॉल करथले
1: नमस्कार चौपड़ा कहती कटक जिलार चौपड़ा ग्राम झारपड़ा पंचायत
0: आज्ञा किए कहते निजर परिचय दिंतु
1: वासुदेव बेहरा आज्ञा
0: आज्ञा आजिरो टॉपिक
1: आजिरो टॉपिक ता किछ सारे लाइन नहीं कि जानी हला नहीं किछ
0: आज्ञा आजिरो टॉपिक अपन मानन को पई रही छी जे कॉलेज रो सेई प्रथम दिन रो स्मृति एवं अनुभूति हम सहित शेयर कर परिबे तबे कोन रही छी अपन को सेई कॉलेज रो प्रथम दिन रो स्मृति आ अनुभूति
1: आज्ञा ता हम तो कॉलेज को जाई नो बुझले की
0: आज्ञा
1: आमे अंडरवाटी की पटे रही छी दशम
0: ताले साथी स्कूल बेलो रो किछ स्मृति अनुभूति शेयर कर दियंतु
1: तो आमे बहु प्रकार समस्या तो आमे जीवन रे स्कूल बोल जानु पाठ रहत किसी जानु बापा माँ जन्म ग्रहण कर पेट खंडे भी अभाव अनटन भाई पेट खंडे पिंधिकी आम जीवा को हेले चाली प्रकार पेंट पिंधिकी आज स्कूल को गोटे पेंट को लेकिन ओदा जदि कौन कर बदली बदल सुखिले पिंधिकी ओदारे भी स्कूल मटी माड़ी बुझे
0: कि
1: सब दुख रहा बेलाए खाइले बेलाए उपास
0: बुझे
1: तो छुआ मान घर बाहर जोता मजा पिंधे।

0: हेलो
1: पापा, शुभ संध्या, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: शुभ संध्या, नमस्कार, जय जगन्नाथ। की कहुथिले निजर परिचय टिके दियंतु।
1: पापा आभासन कोजी टाटा स्टील प्लांट।
0: आज्ञा, स्वागत करछि आजर डायलिन लाइफ को।
1: पापा गोटे कथा रहंतु, जो कॉलेज प्रथम दिन जो अनुभूति, से माने के सुननाति तथि तुम बारंबार कॉल करि बेकार नष्ट कर दले। तीन चार जन एमती ताको फोन टा प्रथम काटि पाटा कॉलेज जाइ छिन रे नै सेडा बुझी खाबो फोन काटि गथा।
0: ठीक अछि, ठीक अछि। आपण निजर एक्सपीरियंस टिके हम सहित शेयर करंतु, जेतु समय बहुत कम अछि। आपण टिके निजर एक्सपीरियंस शेयर करंतु।
1: 10 पर्यंत एलपीजी फर्स्ट कॉलेज रे गलु, फुलपेंट शर्ट पिंटिया पहिला।
0: अच्छा, आपणकर भी सेही सेम एक्सपीरियंस, जेमति हमर किछि श्रोता कहि आसिलेनी, आपणकर भी सेम सेम एक्सपीरियंस।
1: कॉलेज फर्स्ट दिन जिते सांग सब जुआड़े बालेश्वर हूँ कि पटे बौद्ध हूँ कंधमाल हूँ कलाहां हूँ आम फास्ट चिन्ह परिचय हो गलु, भल व्यवहार भल कथा कलु, सी आम व्यवहार दलु, सी आम सेम व्यवहार देखे आम लेक्चर सहित भल सहानुभूति थी, भल संपर्क था। फास्ट दिन जो जाइए फास्ट दिन मोर मुझे चकलेट निहती शहेटा खंडे मुझे बाबा भी पूरा हस्टेल छाड़ी से हस्टेल फास्ट दिन से दिन मो क्लास भी फास्ट दिन आम सब सांगसाथीगल मिठा पिठा भी खुआ खुआ भल आम भितर सुसंपर्क रखिलु। आम जी 10-12 जन आम गोटे ग्रुप करदेलु से प्रथम दिन, तापर आम दिन आम क्लास आरंभ होगा, गोटे ग्रुप करदेलु भल आम भितर भल संपर्क किसी भी सेम चल आम मजा ठटा मजा क्लास भितर हस्टेल भितर भी ठटा मजा करदे इत्यादि।
0: बहुत सुंदर। जाओ कॉलेज रो फास्ट दिन रो आपण एते सबो सांगो पाई गले, सेटा सबोठो बढ़िया कथा।
1: केपर सांगो जुड आस्तेले सब गन चिन्हा पर छैदलु को से मा टिके टिके नर्वस तले आमे तंगु टि साथ दुला रे गोटे दिन आइते हम साथ न गोटा पेटी बसे दि बसे क्लास करिवु पाठ पढ़िवु एते नर्वस होबनी आमे भितरे सांगो सते टिके मिलाम से कि गोटे सु संपर्क रखिबा एते एतिके कले आमे केते भीतर आमे त मजा करैबो आमे हॉस्टल भितरे भी आमे सेम सब जते हो गुली खटी हो किछि मजा गप हो रात रे
0: ठीक अच्छे मन दुख कर सहित कथ बहुत सुंदर लगला। रही नमस्कार।
1: रही नमस्कार।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: ଶୁଣିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 85ତମ ଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ।
1: ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ୍ ପ୍ରବାଚିକା ନିଧିଃ ଝାଃ। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भावि परीक्षासु प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं निवारयितुं समन्वित प्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्। नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्। सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन 11 जनाः मृताः, बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति। आपतोद्धार कार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारत उत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया स्कोप्ये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता। अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटनरोधाय रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्।

0: उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेष् मुक्तव्यापारसन्धिष् भारतीयकृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद्भवनस्य प्रावृट् सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य संचालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षी सदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न द्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलन कारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। सम्प्रति नामची मण्डल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ़ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढ़ अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुई। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनांके एमवी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्यमन्त्रालयम् आहूतः।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने

0: अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल टैक्स को आहुरी सरल कर देछि। सरकार सीमेंट उपरे जीएसटी दर 28% रु ह्रास करी 18% करि देछन्ति। टैक्स ह्रास द्वारा घरोई एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट उपरे चाप कम हेबार संभावना रहिछि। एहिपरि मार्बल एवं ट्राबोटिन ब्लॉक उपरे टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% करि दिया जाइछि। जेबेकि ग्रानाइट ब्लॉक उपरे पूर्वरु 12% तुलना रे एबे केवल 5% जीएसटी लागिबो। एहा सहित बाली चुनर ईटा ओ पत्थर काम उपरे मध्य टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करी 5% करि दिया जाइछि।

0: हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आणिबा पई केन्द्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली केन्द्र खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मंत्री चिराग पासवान कहिछन्ति। आज संसद भवन परिसर में गणमाध्यम सह कथबार्ता बेले श्री पासवान कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा समेत समस्त क्षेत्र में संस्कार आवश्यकता उपरे निरंतर गुरुत्व देइआसिछन्ति। समस्त मंत्रालय में संस्कार अणाजाउछि। प्रत्येक क्षेत्र में विरोधी दलगुड़िक सरकार को गठनमूलक परामर्श देवासह अर्थपूर्ण आलोचन अंशग्रहण करने से अनुरोध करिछन्ति।
2: छात्रों के साथ खड़े हैं हम लोग, युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सके, ये सुझाव आप दीजिए, अपनाएंगे आपके हर सुझाव।

0: এটি শেষ করছু আজির গীতরে মিতরে কার্যক্রমকে টিউন করেছেন 100.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কেটে দিলসি দিল তক আমার পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছো আকাশবাণী দিল্লি রো।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं

0: के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।

0: समाचार भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी जे ए एसी ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बंद और चक्का जाम जारी है। जेए

0: एसी ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the union minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked.

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पाई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

प्योर कल्चर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो अंडर समय वर्तमान रति 9:16 आउ या सहित आरंभ हो जाए छि शो अवल स्मृति से स्मृति जहां अवला ही रह जाए आउ यही अवल स्मृति शो रे आमे सुनु किछे पुरुणा क्लासिक एवरग्रीन हिट सॉन्ग्स आउ आज अवल स्मृति रे सुनिबा आनंद बख्शी कर किछे सुपर हिट सॉन्ग्स सो प्रथम गीतटी उदित नारायण कंठरे पहुंचुछे आपण मनक पाखरे कथचित्र दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रु जहाँ को लिखिछंती आनंद बख्शी एवं कंपोज करिछंती जतिन ललित

आनंद बक्सी गीत रचन गीत गुड़िक शुणु कार्यक्रम अहोल स्मृति तेज कार्यक्रम नेक्स्ट गीत शुणीपर कुमार सारू कंठरे परदेश कथाचित्र जहाँ को रचना करनंद बक्सी कंपोजिशन नदीम श्रवणकर।

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल तक बर्तमान शो चली रेनबो एसएमएस आउ रेनबो एसएमएस रे नेक्स्ट मेसेज टी कर रमेश दास चिन्मय दास रानु जुडिशियल कॉलोनी कोरापुट रु जमशेदपुर झारखंड रु सुपही साही गांव रु देवेन्द्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी एवं देवेनजी नेक्स्ट मेसेज टी कर प्रशांत कुमार बिशोई श्री कोरुआ गोपालपुर कटक रु

0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ନିଜର 56ତମ ବୈଠକରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶସ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି। ଭାରତର ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଜରୁରୀ ଗ୍ଲୁକୋମିଟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିର ଦର ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଚଷମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଆସ୍ଥମାର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେକ ଦରକାରୀ ଔଷଧ, ଥର୍ମୋମିଟର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ସ ଉପରେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 28% ଥିଲା। ଏଚ୍ଏସ୍ କୋଡ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ ଖାତିର ନକରି ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଏବଂ ପାର୍ଟସ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବ ତଥା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସହଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୁସିର କଥା ଏହିକି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଏବଂ

0: ଉପରେ 5% ରିହାତି GST ଦରର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। DD News, केवल खबर, पूरी खबर।

ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भोनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीना बादाम हलदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराइ परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

सुनी सुनी देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे दिल से दिल तक रे शो चले छे सुबह सकाळ रे ये सबे कथा उठले छे आपण निजो को कीमती भल पाते सकाळ सकाळ आपण निजो पाई कोन करंती निजो को भल पाई बापाई आउ पग गोडी एसएमएस मध्ये आसे सारी छे नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुडा रु लिखु छो कि जय जगन्नाथ देव मित्र आपा मु सकाळ उठले रेडियो रे भजन सुनबा को भल पाए एवं एही समय तक को मु निजो पाई एवं प्रभु को पाई दिए बहुत सुंदर कथा टी लिखी छंदी सत कथा निज को भल पाइबा सबुठू इम्पोर्टेंट कथा अन्य मन को भल पाइबा सहित निज को मध्ये भल पांतु एमती निज पाई समय काढंतु एवं निजे हसीबा सहित अन्य मन को हस पछर सुंदर कहानी साजंतु

सुनिश्चित अपने मन दो मित्र को 100.4 आकाशवाणी पर ब्रीन वो कैरेक्टर सिद्धल था कृष्ण आंधे देखिए नेक्स्ट एसएमएस की पढ़ो शांति वों सी समय पहले निज पाई कौन कर आंधे देखिए ना बाप एसएमएस करी शांति आलोक महाराणा कालिया पानी सुकिंदा जाजपुर लिखी चंदी नमस्कार देवो मित्र मैडम आपन को सुंदर कंठ स्वर आत्मीय उपस्थापना और सकारात्मक कथावार्ता प्रतिदिन श्रोता मान मन जीतनी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कथा लिखी थी एत सुंदर शुभेच्छा पाई सहित लिखी आप कार्यक्रम शुणिले दिन टी आहुरी सुंदर लगे सबुबले हस उत्साह बांटी चलत अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आपन को ढेर सारा शुभेच्छा सहित लिखी निजपाई समय पाइले परिवार सहित समय बिताए आउ भल पुस्तक पढ़े वॉक करने को जाए निज स्वास्थ्य जत्न निए मन शांत रुहे आउ नुआ उत्साह मिले बहुत सुंदर कथा एमती निजपाई समय काढ़ी चलत निज स्वास्थ्य जत्न नौ था बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर मेसेज टी

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपनक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: ए सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।

गीत पर पुनः स्वागत आपण माने ट्यून करछंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक रेदेव मित्र आशी सोनी की डायल इन लाइव रो चलन देखियो नेक्स्ट के डायल करछंदे ओ से कोन कहछंदे इजे कथा नहीं कॉल टी कटि जाई छी किंतु आपण माने मते कॉल करि परबे एवं शेयर करि परबे आपणक कथा मो सहित शेयर करबा पई डायल करंतु नंबर हेउ छी 0671230353

सुनुछंती आपण माने देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे समय वर्तमान स्टूडियो खडी रे 10:08:50 एवं एथे सहित आरंभ होई जाय छे आपणक मनपसंद रा कार्यक्रम हां रेनबो एसएमएस रा कार्यक्रम जोठे आपण माने निज मनपसंद रा गीत सुनि थांते एवं निज लोक मानंको डेडिकेट करि थांते सेति पई बस आपणको निज इनबॉक्स को जिबा को पडिबो टाइप करबा को पडिबो एफएमआरसी स्पेस ते आपणको गीत सुनिबा को चाहौ जंदे तारना गीतरी को फिल्म एल्बम रो सचि तारना लिखिबे एवं परे परे कहां को डेडिकेट करबा को चाहौ जंदे ताको ना लिखिबे तांको पई जदि किछि सुंदर मेसेज थाय नेहति बापरे लेखंतो एवं परे परे निज ना गा ठिकाना लिखि पठि दियंदो आम पाखो को पठिबा पई नंबर हिउछि 0949596320 आपण माने चाहिले हमको व्हाट्सएप जरिए रे मध्ये एसएमएस करि परिबे व्हाट्सएप नंबर टी हिउछि 8895254200 यस आपणक एसएमएस अपेक्षा देव मित्र श्योर रहिबा किंतु चालन देखिबा अमर आज प्रथम एसएमएस के कोठ लिखि छथि एवं कोन लिखि छथि एई एसएमएस लिखु छथि सुचित्रा सेनापति

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक एंड दिल से दिल तक रेडियो मित्र आज आपनका सहित. नेक्स्ट एसएमएस हमें भेज रहे हैं मानसी, अनिल, गौरव, कविता अरोरा, गांधी मार्ग, करमपुरा, न्यू दिल्ली से आ रहा है ये मैसेज. और उनका फरमाइश है मोहरा से टिपटी परसा पानी, क्योंकि आज दिल्ली का मौसम थोड़ा कूल है इसीलिए वो सुनना चाहते हैं टिपटी परसा पानी. जरूर आपके फरमाइश हम पूरा करेंगे. ठीक ए सॉन्ग रो रिक्वेस्ट मध्य आउ जने देछंती निहाती भाबरे तांको नाम मध्य मो जणे रखिबे. से होछंती प्रमोद कुमार साहू ढिया साही कादवापडा जगतसिंहपुर रो. से मध्य मोहरा रो टिपटिप बरसा पानी सुनिबा को चाहिछंती. निहाती भाबरे तांको मनपसंद रो गीत एवं दिल्ली रो ई फरमाइश सॉन्ग मु निहाती भाबरे सुनेबे. नेक्स्ट फरमाइश सॉन्ग किया कोठ पटी छंती एवं कोन सुनिबा को चाहिछंती चलम देखिबा. एही एसएमएस करूछंती हालू भाई सेयाण आठगढ़ रु एवं लिखुं जय जगन्नाथ. गुड मॉर्निंग नमस्कार देव मित्र अपा, आज सकाल आपण प्रेजेंटेशन बहुत भल लगला अपा. आज डेरी सॉन्ग टी मन पड़ा तेणु यही पुराणा गीत टी निहाती भाव में शुणे. निहाती भाव आप मन पसंद गीत मुझे शुणी तो रास्ते शुणा को चाहते चुपके सारी गीत टी शुणा को चाहते मोहम्मद रफी कंट्री निहाती भाव में ब्यूटीफुल से गीत मुझे श्योर भेटी देवी. चलो बिल्कुल भी लेट नक शुणी ना बैक टू बैक ये दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। ये फरमाइश आ रहा है हमें दतरंगी भाटपरा छत्तीसगढ़ से, और हमें लिख रहे हैं ये मिसेस हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा एवं निखिलाल वर्मा, और उनका फरमाइश गाना है फिल्म आप आए बाहर आए 1971 से, एक मशहूर गाना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुंदर सा गाना आप सभी के लिए, तो चलिए सुनते हैं साथ मिलकर ये सुंदर सा गाना।

ट्यून करिछंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक ए दिल तक सफर रे मु अछि मोनालिसा आपण मानक साथी रे वर्तमान समय त 1 घंटा बाजी सारिलानी आरंभ करूछु आपण मानकर फेवरेट शो कलाकार

अभिजित्ष भयस लक्ष लक्ष श्रोता हसई कंदी प्रेम मीठा भावन हजाई अभिजित आज अनेक कनसर्ट कर नूतन पीढ़ी सह सौर मिशन समय बदली संगीतर धारा बदली किंतु गीत एवरग्रीन तेरे आज तो समय कलाकार शो को पुणि थे नहीं आसमी आउ जन कलाकार कहानी को नहीं खास आपण मानी।

ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक आम समस्त को गीत सुनिबा को बहुत ही भलो लगे आउ गीत सुनिले मन रे जहां भी थाउ ना कहेंगे सब कुछ हल्का हो जाए आ से गीत जदी टिके पुरणा थाए ना से गीत सह आमर बहुत किछि मेमोरी रो फ्लैशबैक आसी जाए माने बहुत किछि मेमोरी ताजा हो जाए तबे चलंत ना से एवरग्रीन सॉन्ग को सुनिबा आउ से गीत रे ताले ताले झूमि जिबा

0: Sergeant? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। टक भी ट्यून भी सब किछे गोटे सोरे फुल ऑन मस्ती फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली ऑन किछी कथा किछी गीतरे आ मु अच्छी मोनरिसा आपण मनक साथे रे आज हमे ढेर सारा कथा बा गीत मध्ये सुनिबा किछी कथा किछी गीतरे के भाबिले देखि जदि आमको केहि स्नेह रे पदे मीठा कथा कहि दियंती केते खुशी लागे आपण आपण लागे नै जीवन रो बडो बडो उपहार सब बेले दरकार होइ नथाय बेले बेले गोटे मीठा कथा टिके स्नेह भरा डाको किंबा मन खुला हस ही कहार पूरा दिन को पूरा ब्यूटीफुल करिनिए। शब्दरे एते शक्ति थाए जे मन को जीति जाए आउ संपर्क को बेस निविड़ करी हुए तेबे चालन दुना साथी ए मीठा मीठा कथा सह मीठा मीठा गीत भी सुनिबा तेबे सुने देउ छी ए गीतटी सुनु थांतु आउ कहु थांतु दिल से दिल तक।

0: मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार।

अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय

उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत्त्वम असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरु पिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है।
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: जीतात क्या तुम जानते हो? हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फल तात।
1: बस अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: बस तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है।
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। आशोताओं अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अब समय हुआ है आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर में आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोलिसिस की।

0: का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तर। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का नया दिन, आज का नया रेडियो डॉक्टर और आपका वही पुराना चैनल और वही पुराना समय। जी हां, 3 से 4 बजे का ये समय होता है रेडियो डॉक्टर का और रेडियो डॉक्टर में आपको इंतजार होता है कि किस तरह से आज एक नया अंक आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएगा। तो आज का भी ये अंक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। क्या होती है ये बीमारियां और कैसे इनको जानकर इनसे बचाव किया जा सकता है और उपचार की प्रक्रिया क्या रहती है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के रेडियो डॉक्टर्स से करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेर अहमद खान। आप फिजियोलॉजिस्ट हैं और आप एक रिहैब इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेर जी आपका।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: तो जैसा हमने बताया श्रोताओं को, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा कि ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और कुछ और शब्द होते हैं इनसे मिलते जुलते जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन हमें सबके मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। अंकुर सर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो मैंने बहुत अक्सर सुने हैं पर हमें, हमारे श्रोताओं को भी शायद फर्क नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बता दें।
1: मैम, मुझे लगता है कि ये इस आई थिंक एक घंटे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो कि अपना डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि सर मुझे स्पॉन्डिलोसिस हो गया। सो आप समझे मैडम, ये अलग अलग शब्द हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक शब्द का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना जो कि डेफिनेटली उम्र के साथ होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो शब्द है उसका मतलब है जोड़ों का उम्र के साथ खराब होना। अब ये आर्थराइटिस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों में जो जोड़ों में बदलाव आता है उसके कारण होने वाला आर्थराइटिस है। तीसरा शब्द आपने कहा स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस आप एक तरीके से इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस है। मतलब कि जब भी हम एक्सरे करते हैं, अगर हमारी उम्र हो रही है थोड़ी 40 वर्ष 50 वर्ष, तो जरूर कोई ना कोई चेंज एक्सरे में दिखेगा और ये जो एक्सरे में दिखने वाले बदलाव होते हैं इनको स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्द दे ही रहा है। और अच्छा। चौथा शब्द जो आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई पैथोलॉजी हो रही है, चाहे वो सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बारे में फिर और बात करेंगे।
0: जी जी, तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बेसिकली तो हमारा सब्जेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस है पर मुझे लगता है श्रोता हमसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टो या स्पॉन्डिलाइटिस पर भी सवाल जरूर पूछेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने आपस में जुड़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। डॉक्टर उमेर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम हड्डी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी पर ही ध्यान हमारा जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी जब भी हम बोन डिजीज पर बात करते हैं?
2: देखिए, अभी सर ने बताया दो चीजों में डिफरेंस
0: जी,
2: और फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने में इसमें इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मर्ज या कोई भी प्रॉब्लम्स जब होती है तो फंक्शनल एबिलिटीज कम होते हैं जिसकी वजह से डीकंडीशनिंग इफेक्ट आता है। अब जब ऐसी जब बीमारियां होती है तो मसल्स और बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस ये है कि पहले तो आपका कुछ एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं या फिर डायग्नोसिस के साथ आप इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो प्रोसेस स्लो हो, मसल स्ट्रक्चर्स जो बीमारी होने के वजह से जो हो सकता है जल्दी वो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्लो डाउन होते हैं या नहीं होते
0: जी। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्पाइन सर्जन है तो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी जरूर रहता है।
1: जी बिल्कुल मैम, ये टीम है, हमारा काम है सर्जरी करके जो भी हमारा अंग है शरीर का जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसे वापस अपनी जगह पर लाकर बिठाना, बट उससे काम निकलवाना और उससे काम ले पाना, ये थेरेपिस्ट जरूर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता
0: है। बिल्कुल, तो ये जोड़ा होता है और ये जोड़ा आज हमारे रेडियो डॉक्टर में भी है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको यहां सॉल्व कर सके। और हम एक गीत सुन लेते हैं और यहां पर इस गीत के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पोंडुलोसिस के बारे में। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो
1: मैम, नमस्ते। मेरा नाम अनिल कुमार मित्र।

0: प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 18003456718 किंबा 1912 रे जोगाजोग करंतु
1: ट्यून करी चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक तिलसी सिलताक वर्तमान सुनंतु एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके